हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: ये सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के

0: मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। ये समय है प्रभु भक्ति का। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

प्रभु के ज्ञान तक न रुक के प्रभु को अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। दीजिए इजाजत कार्यक्रम वंदना से, आंचल को अनुमति।

भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:35 हुए हैं। आइए अब नज़र डालते हैं आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

हमारी प्रातःकालीन सभा में आप सुनेंगे 6:40 पर श्री रामचरितमानस गान। कार्यक्रम खेती में आज आप सुन सकेंगे 6:50 पर। 7 बजे समय रहेगा सदाबहार नगमों का। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे 7:45 पर। समाचार प्रभात का समय रहेगा 8 बजे और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़ आकाशवाणी दिल्ली से। 8:30 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, हमारे दोनों ही चैनल पर।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे सवेरे 9 बजे। 9:10 पर पुनः आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। सुगम संगीत का समय रहेगा 9:30 और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत। राजस्थानी गीतों से सजा कार्यक्रम गोखड़ा आप सुन सकेंगे सवेरे 11 बजे और 11:30 पर आप फिर से सुन सकेंगे सुगम संगीत। बच्चों का कार्यक्रम बगिया के फूल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। 12:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

महिलाएं सुनेगी उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत दोपहर 1:05 पर। 1:45 का समय रहेगा फिल्म संगीत और साथ ही देंगे विकास चर्चा। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार और कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा 2:30। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे 3:00 जिसका प्रसारण दिल्ली से किया जाएगा।

तो ये थे हमारे मुख्य कार्यक्रम आज की प्रातःकालीन सभा के। सांध्यकालीन सभा का आगाज होगा शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी के साथ। हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे शाम को 6 बजे।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम को 6:05 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:30, 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार का समय रहेगा 6:45। कार्यक्रम खेती और घर आप सुनेंगे शाम को 7:00। फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:00, और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से। सुगम संगीत आप सुनेंगे रात को 9:15 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30 पर। रविवासरी संगीत सभा का समय रहेगा रात्रि 10:00। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, और 11:10 पर ये सभा समाप्त होगी। तो ये थे हमारे दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

प्रभु की लीला और माया का अद्भुत दृश्य उपस्थित है अयोध्या में, जो सर्वत्र व्याप्त निरंजन अर्थात माया रहित निर्गुण और अजन्मा ब्रह्म है। वह भक्ति और प्रेम के वश होकर माता कौशल्या की गोद में नन्हा शिशु बनकर खेल रहा है। नील कमल और जल से भरे मेघ के समान इस बालक के शरीर में करोड़ों कामदेवों का अनुपम मनोहारी रूप है। चरण के तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह अंकित हैं। नन्हे नन्हे पांव से पैंजनी की ध्वनि मुखरित होती है तो मुनियों का मन विमोहित हो जाता है। लाल कोमल होंठों से उच्चरित मधुर तोतले शब्द बहुत प्यारे लगते हैं। चिकने घुंघराले बालों को माता ने कई प्रकार से बनाया संवारा है। ऐसी ही मनोहारी छवि है पीली झंगली में लिपटे शरीर के हाथों और घुटनों के बल चलने की। बाल लीला देखने और उसके सुख का भागी होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति जोड़ी है। भगवान शंकर पार्वती को राम कथा सुनाते हुए कहते हैं, इस प्रकार जगत के माता पिता अवधपुर के निवासियों को सुख दे रहे हैं।

0: सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती में आज। प्रस्तुत करता है नारायण लाल आमेटा।
1: खेती में आज कार्यक्रम होने वाला अगला किसान भाई बहना ने नानू भाई रो गणो गणो राम राम सा। देखो सा किसान भाई, आज राणे कार्यक्रम में आप बात करा के रबी फसलारी कटाई मड़ाई गहाई रो काम आने टाइम पूरा भई चुके है और अना फसला ने सुरक्षित भंडारण करनो भी किसान भाई बहना रे बात है जरूरी है। अनाज रे लार लारे भूसो भी एक बहुमूल्य उत्पाद है तो अंडो भी भंडारण जो है देखो सावधानीपूर्वक किदो जानो चावे। रबी फसलारे उत्पादन में वैज्ञानिक तरीका ने सुरक्षित रखनो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अने टाइम पे किसान भाई जो है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करने मिट्टी ने भी देखो सुरक्षित बनाई सके। जटे देखो आप बात करा गेहूँ और जोरी फसल में कटाई उपरांत प्रबंधन रे तो आपा सब जाना कि अधिकांश किसान भाई बहन जो है गेहूँ री कटाई जो है दराती करे है और झंडे कारण देखो 3-6 सेंटीमीटर ऊपर तक कटाई की दी जावे। कटाई रे केड़े जो टेम वे वन में देखो फसल उत्पादन रो प्रमुख कारण है और किसान भाई कटिया लगा गेहूँ रा पौधा रा छोटा छोटा बंडल में बांध दे खेत में 2-3 दिन तक हो गई देखो छोड़ देता है और अंडे केड़े मशीन या बचे कंबाइन द्वारा देखो आप कटाई करा तो नमी वाला दाना ने सुखावरो देखो टेम नहीं मिले। कटाई रे केड़े यो एक महत्वपूर्ण टेम है जेनी टेम आप परिपक्वता अवधि ने ध्यान में रखते लगा आपने दाणा ने जो देखो झड़वा और गिरवा बचाई सका। हाँ किसान भाई बहना ने चाहे कि जो फसला पाक गए मना रहे देखो जो आप फसला ने सीधा धूप में हुकाऊँ देखो वचा दाणा ने साफ बोरी में देखो अपने भरनो चाहे और अणु भंडारण करवाऊँ देखो आपने जो है गेहूँ री फसल री सुरक्षा वे। कटाई रे उपरांत दाणा ने तुरंत सुखाणो एक शुष्कता उचित मड़ई निड़ई साफ सफाई साफ बोरिया रो उपयोग और वैज्ञानिक तरीकों नमी और कीट प्रबंधन अगर आप राखांगा और समुचित हवा प्रबंधन रे लार लारे अगर अना सब स्तर ने अपने ही ने आपा अगर गेहूँ और जोरी फसल रो प्रबंधन करांगा तो बाजार में आपने अच्छो लाभ मिलेगा। जटे देखो वैज्ञानिक तरीकों बीज भंडारण करवाऊँ देखो कीट और रोगा रोग प्रकोप कम वे जणू बीज लांबा टाइम तक स्वच्छ और सुरक्षित रहे है। बीज ने भंडारण पहला ठीक प्रकार सुखाई लेनो चावे और भंडारण रे केड़े विभिन्न प्रकारों अगर कीट प्रकोप दिखाई दे तो वन में नमीरी अधिकताओं देखो कीट प्रकोप बढ़ जावे है तो भंडारण रे टाइम धान्य वाली जो फसला है वन में नमीरी मात्रा 8-10% और दलहनी और तिलहनी फसला में 6-8% तक नमी वेवा में वनारो भंडारण करनो चावे। भंडारण रे टाइम पे धान्य वाली जो फसला है वना में बीज 10-12% अधिक नमी वेवा पर कीट मकोड़ा रो प्रकोप ज्यादा वे और 14-15% अधिक अगर वन में नमी है तो फफूंदी जनित रोग और 15% अधिक नमी वेवा पे अच्छी तरह अंकुरण नहीं वे पावे है। तो किसान भाई बहना अपने चाहे कि सबसे पहला भंडार गृह वाली जगह ने आप अच्छी तरह साफ सफाई कर ला पुराना अवशेष मकड़ी रा जाला जो है वना ने निकालने साफ कर देना है। दीवारा या पचे फर्श पर पड़ी दरारा ने सीमेंट बंद कर देना है और कीटारे बचाव रे वाते मेला थिया

50 cc मात्रा जो है 100 लीटर पानी में घोल बने ने भंडार घर में अच्छी तरह छिड़काव करना है। अन्य कमरा में कम एक सप्ताह तक बंद राखवा पर अन्य छिपा लगा जो कीड़ा मकोड़ा है वे मर जाएगा और कीटारो छिड़काव नियंत्रण नहीं की दो तो 2 कीट प्रति किलोग्राम बीज या अनाज की उपस्थिति में धुआं देवा वाला विषैला जो रसायन है वनों भी कीट मर जावे है। अन्य धुआं में विषैली गैस निकले एल्यूमिनियम फास्फेट की 2 गोली प्रति टनरी दर विभिन्न ऊंचाई पर आपने रख देनी है और छल्ली में गैस अवरोधी चादर ढक देना है। गोलियां ने हवारी नमी शोषित वे और फास्फिन जो गैस है वह निकले है जा कीटा ने मार देवे है। मिथाइल ब्रोमाइड रो उपयोग करने पर ढेर में 3-5 मिलीलीटर मिथाइल ब्रोमाइड प्रति 100 किलोग्राम अनाज रखवारे लारे बर्तन बंद कर दा और बर्तन में गैस निकलवाऊँ कई वेगा कि जो कीट मकोड़ा है वे मर जाएगा और अनाज ने नीम रे बीज रे पाउडर रे लारे मिलाई ने भी रखा तो कीट रो प्रकोप नी बे है। गोदाम में बीज भंडारण रे वाते हमेशा एक लकड़ी रो प्लेटफॉर्म बनानो जो करीब 1 फुट ऊंचा फर्श पे वे दीवारों लगभग 1 फुट री दूरी पे वे और बोरा ने गोदाम री दीवार ने सटाई ने कदी नहीं रखना चाहे। भंडारण प्राय जूट रा बोरा में करना चाहे और नई बोरिया रो उपयोग करना है ज्यादा अच्छो रेवे। पुरानी बोरिया वेवा पे वना ने अच्छी तरह सुखाई ने 3-4 दिन तक तेज धूप में सुखाई देनो है और पुरानी बोरिया रो उपयोग में लेवाऊ पेला वना ने गर्म पानी धोई ने 0.1% मेलाथियन गोल में 15-20 मिनट तक दुबन राखनो है पछे वना ने अच्छी तरह सुखाई ने उपयोग में लेनो चाहे। अबे देखो अबाणु आने टाइम पे आप मूंगफली री फसल में शस्य प्रबंधन रे अगर आप बात करा तो सिंचित क्षेत्र में जायद मूंगफली री बुवाई जो है मई रे पहला सप्ताह में कर सका हाँ। अंडवाते मूंगफली गेहूं फसल चक्र अपनाए जानो चाहे परंतु एक ही भूमि में हर वर्ष अगर मूंगफली उगावंगा तो अणु भूमि में कई रोग पैदा हो जाएगा। जायद मूंगफली री उन्नत किस्म M522 M335 HB84 और सिंचित क्षेत्र में M3712 ने क्षेत्र में जटे वर्का अच्छी वे वटे लगाई जा सके। जटे उर्वरक रे प्रयोग री अगर आप बात करा तो मिट्टी परीक्षण रे आधार पर देखो उर्वरक रो प्रयोग करनो लाभदायक रहे। अधिक उत्पादन लेवारे वाते सिंचित क्षेत्र में उर्वरक रो प्रयोग 2530 किलोग्राम नाइट्रोजन 5060 किलोग्राम फास्फोरस और 4000 किलोग्राम पोटाश यदि बारहने क्षेत्र में है तो 20 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20-30 किलोग्राम पोटाश जो है प्रति हेक्टर जो है मात्रा किसान भाई डाल सके है। अधिक उपज लेवारे बात है वावणी रे टाइम पे 250 किलोग्राम प्रति हेक्टर री दरों जिप्सम रो प्रयोग भी किसान भाई कर सके है। यदि केरणी कारण देखो बुवाई रे टाइम जिप्सम ने अगर आप मिट्टी में नहीं मिलायो है तो फसल यदि 40-45 दिन री वही जाए वही टाइम पौधा री जड़ा में देखो अन्य आप डाल सका हाँ। मिट्टी में वावणी रे पहला 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर या पचे जैविक खाद रे रूप में भी आप उपयोग में ले सका हाँ। यदि खड़ी फसल में जिंक री कमी रे लक्षण दिखाई दे तो 0.5% जिंक सल्फेट और 0.25% बुजा लगो चूनो जो है वरने 200 लीटर पानी में अपने गोल वणाई ने पर्णीय छिड़काव रो उपयोग कर सका हाँ। लोहारी कमी वाला क्षेत्र में फसल में जिस तरह कमी रा लक्षण दिखाई दे तो 1% फेरस सल्फेट जो है वनडो पर्णीय छिड़काव करनो है और बोरान री कमी वाला भूमि में बोरेक्स 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या जिप्सम रे लारे खड़ी फसल में 40-45 दिन रे अवस्था में आप दे सका हाँ। मूंगफली री फसल में खरपतवार द्वारा लगभग 40-45% तक जो उपज वे वन में कमी आवे। मूंगफली री फसल शुरुआती 30-35 दिन री अवस्था में खरपतवार रे वाते संवेदनशील वे खरपतवार निकालवार वाते 3 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई करनो लाभदायक रहे। अणमें पहली निराई गुड़ाई वावणी रे 20-25 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई वावणी रे 35-40 दिन बाद करनी चावे। मूंगफली री फसल में खरपतवार नियंत्रण रे वाते बासालिन या ट्रेफलोन री 0.75 या पचे 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व री मात्रा वावणी पहला मिट्टी में मिलाई देनी है और वावणी रे केड़े खरपतवार रो प्रयोग नी कीधो गयो है तो वावणियों 1-3 दिन रे अंदर लासोरी 1.5 या पचे 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पेंडी मिथेलिन री 1 या 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व री मात्रा ने छिड़काव द्वारा अच्छी तरह मिट्टी में मिलाई देनो है और खड़ी फसल में चौड़ी पत्ती या पचे घास वाला खरपतवार नियंत्रण रवाते इमेज या थाइपर जो है 75-100 ग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व री मात्रा वावणी रे 20-25 दिन पर छिड़काव करनो है। वावणी रे बाद 15-20 दिन रे अंतराल पर सिंचाई करते रहनो और सिंचाई करते वेरा अणी वात रो ध्यान रखनो है कि खेत में

0: पानी जमा निवेणो चावे जणा खेता में पानी भरावरी समस्या वे तो वटे जल निकासी री उचित व्यवस्था वेणी चावे। चेपा जो कि पौधा में रस चूसे वंडो प्रकोप ने नियंत्रण करवा रहे वाते 200 मिलीलीटर मेलाथियन 50 सीसी जो है 200 लीटर पानी में मिले ने फसल पर छिड़काव करना है। अणि रोग री रोकथाम रहवाते फफूंदी नाशक जिसतर बावेस्टिन या थिरम नामक दवा जो है वणु बीजोपचार करने अगर आप वावणी करांगा तो वो भी एक अंडो अच्छो उपचार है। तो देखो किसान भाई आज रे कार्यक्रम में यही जानकारी और देखो कार्यक्रम में घड़ी आड़ी देखा तो अपने चालवारो टेम वेरो तो आज्ञा दो नानू भाई ने राम राम सा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज, प्रस्तुति थी नारायण लाल आमेटा की। ये आकाशवाणी उदयपुर है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमों में सबसे पहले आप सुनेंगे अनारी फिल्म से उदित नारायण को।

टैक्सी टैक्सी फिल्म से अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। अगला गीत हमने चुना है फिल्म बेटा से, आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की।

जिगर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और अभिजीत को। अगला गीत हमने चुना है फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, आवाज़ है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की।

0: आप सुन रहे सदाबहार नगमे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म क्या कहने का ये गीत और सदाबहार नगमे की आखिरी प्रस्तुति। फिल्म है कहो ना प्यार है, आवाज़ है कुमार सानू और अलका याग्निक की।

फिल्म कहो ना प्यार है, आप इसी गीत का एंजॉय कर रहे थे और इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे अब यहीं समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी उदयपुर है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: विज्ञापन से पूर्व आपने सुनी मेहदी हसन की गाई ये गजल, और उस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, तत्पश्चात मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वारंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज हैदराबाद।
3: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया

0: के समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
1: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैय्या थिरप्पू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, वीसी के, वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
2: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल RN रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
6: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डी

0: डीआरडीओ ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
1: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को डीआरडीओ ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
0: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त, अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमरीकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और

0: contest of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advanced to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 Championships in Tashkent. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। ये समय है हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का।

0: सूरज की तरह चमकते रहो, हर अंधेरे से लड़ते रहो, विश्वास अगर खुद पर हो तो हर मंजिल को छूते रहो। इन्हीं पंक्तियों के साथ नमस्कार उदयपुर का आगाज।
1: बिल्कुल आगाज करते हैं नमस्कार उदयपुर का संडे स्पॉटलाइट के नाम से। और आज के इस संडे स्पॉटलाइट में मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकर
0: और मैं आंचल।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और साथ ही साथ हम बताते चले कि आज के संडे स्पॉटलाइट में क्या खास है।
0: बिल्कुल भगवती, संडे स्पॉटलाइट में आज हम चर्चा करेंगे सप्ताह की झलक में ग्रीष्म अवकाश और समर कैंप के बारे में। साथ में देंगे सप्ताह की प्रमुख खबरें और IPL अपडेट। हिस्टोरिकल फैक्ट में हम बात करेंगे काल क्रम के अनुसार मेवाड़ की इमारतें, महल, किले, जिले और उनके इतिहास की जानकारी।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव जो बाइट्स है, जानकारी और मनोरंजन। इतिहास में आज 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बातचीत होगी और साथ ही साथ लिसनर्स कनेक्ट भी होगा। और आप हमारे कार्यक्रम से संबंधित संदेश हमें भेज सकते हैं। हमारे नंबर हमेशा की तरह वो ही 9462697568।
0: बिल्कुल भगवती, लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: माँ की दुआओं में इतनी ताकत होती है, हर मुश्किल भी आसान लगती है। उनके प्यार की छाया में जिंदगी हर दिन मुस्कुराती है। भगवती, आज है मई माह का दूसरा रविवार और प्रतिवर्ष मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। माँ को खुशियों और सम्मान देने के लिए पूरी दुनिया अभी कम होती है, फिर भी विश्व में माँ के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और 2026 में ये दिन आया है 10 मई को, यानी कि आज का दिन। और एक कहे ना तो आंचल, माँ के इतर कुछ भी नहीं है, सारी सृष्टि माँ में समाहित है। और माँ के बिना प्रकृति और सृष्टि की कल्पना करना ही बेमानी है।
0: बिल्कुल, माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है। उनका प्यार निस्वार्थ और अनमोल होता है। यह दिन हमें माँ के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, माँ के त्याग, प्यार और देखभाल के लिए उनको धन्यवाद कहना बहुत ज़रूरी है। परिवार में उनकी भूमिका को आपको सम्मान देना ज़रूरी है और उनके साथ समय बिताना और उन्हें खास महसूस कराना संतान के लिए ज़रूरी है, है ना। और आज का ये जो दिन है हम बहुत ही शान से मनाते हैं, क्योंकि माँ के बिना घर अधूरा है।
0: बिल्कुल,
1: है ना। और अगर हम कहें तो माँ को गिफ्ट देना, माँ के साथ खास रूप से आज के दिन खाना बनाना या खाना और सरप्राइज प्लान करना तो आप सबका बनता
0: है। बिल्कुल, आज के दिन को यादगार बनाने के लिए सुबह उठते ही माँ को शुभकामनाएं देकर उनसे आशीर्वाद ले और उनके पसंद के आइटम उन्हें हम उपहार में दे सकते हैं।

0: भगवती, ये धुन आते ही हमारे श्रोताओं को इत्तला कराती है आईपीएल अपडेट की। भगवती, तो बताइए कल के मुकाबले के बारे में।
1: बिल्कुल, कल का जो मुकाबला हुआ उनके बारे में जानकारी आप देंगे, साथ ही साथ आज के मैचों के बारे में अगर बात करें तो आज दोपहर 3:30 पर चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच मुकाबला होगा। दूसरा मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच शाम 7:30।
0: बिल्कुल, और कल के मैच की बात करें तो आईपीएल 19 में जयपुर के घरेलू सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स की हार का सिलसिला थम नहीं रहा है। शनिवार को गुजरात टाइटंस ने इन्हें 77 रन से हराया। यह रॉयल्स की जयपुर में लगातार तीसरी हार रही है और टीम यहां एक भी मैच नहीं जीती है। वहीं लीग इतिहास में रनों के लिहाज से यह गुजरात की सबसे बड़ी जीत रही है।

भगवती कार्यक्रम में बात करते हैं सप्ताह की झलक में, सप्ताह की प्रमुख खबरों की। तो सबसे पहले देवस्थान विभाग ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 की तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप इस साल 50,000 वरिष्ठ नागरिक ट्रेन से देश में 15 तीर्थ और 6,000 बुजुर्ग हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ काठमांडू

0: पांडु के दर्शन कर सकेंगे। योजना की पहली ट्रेन 5 जून को जयपुर से द्वारकापुरी नागेश्वर सोमनाथ रूट के लिए रवाना होगी। इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में GRPF का जाब्ता तैनात रहेगा, जिसमें एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल शामिल होंगे। बुजुर्गों की सुविधाओं के लिए ट्रेन प्रभारी और मेडिकल स्टाफ साथ रहेंगे। रेल यात्रा AC कोच के माध्यम से करवाई जाएगी।
1: बिल्कुल, और देखिए सप्ताह भर की खबरों पर अगर नज़र डालें तो कल शनिवार को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। हालांकि ये जो है 17 जून को पड़ रही है, लेकिन और मेवाड़ में महाराणा प्रताप जयंती तिथि के अनुसार मनाने की सदियों पुरानी परंपरा है। इस अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम भी होंगे, जिनमें शोभा यात्रा, अश्व पूजन और वीरों का स्मरण किया जाएगा। लेकिन बहुत से जगह पर जो है अंग्रेजी तारीख यानी 9 मई के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। और मेवाड़ राज परिवार ने एक अपील भी की थी कि 17 जून को इसे मनाएं। और असल में जब भी हम गूगल सर्च करते हैं या कहीं भी देखते हैं तो 9 मई की तारीख आती है, लेकिन चलिए कोई नहीं, पूरे विश्व भर में महाराणा प्रताप जयंती कल मनाई गई।
0: बिल्कुल। साथ ही शहर में बढ़ती गर्मी और लू के खतरों को देखते हुए MB हॉस्पिटल में अब सोमवार से शाम को भी OPD शुरू होगी। शाम 5 बजे से 7 बजे तक मरीजों को परामर्श मिलेगा। इस दौरान मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक, यूनिट हेड और विशेषज्ञ सेवा देंगे। 10 असिस्टेंट प्रोफेसर रोज ड्यूटी करेंगे और मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स के रेजिडेंट डॉक्टर भी वहाँ रहेंगे।
1: और एक खबर यह है कि पर्यटन नगरी उदयपुर में नाइट टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और नीमच माता मंदिर रोपवे का संचालन समय जो है बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया है। ये भी इस सप्ताह की प्रमुख खबरों में शामिल है।
0: बिल्कुल। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वाणिज्य और प्रबंध महाविद्यालय में इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया बदली गई है। BVOC, BCOM ऑनर्स और BBA में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET देनी होगी। यह परीक्षा 22 जून को होगी और इसकी मेरिट 12वीं के अंकों और एंट्रेंस टेस्ट दोनों के वेटेज 50-50% पर रहेगा और आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून रहेगी।
1: और ग्राम रथ यात्राएं निकल रही है और जिले भर में ये यात्राएं पहुंच रही है और जगह जगह स्लाइड और विभिन्न वीडियो के साथ योजनाओं का प्रसार प्रचार हो रहा है।
0: बिल्कुल। उदयपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का आयोजन 11 से 25 मई 2026 तक शिकारबाड़ी मैदान पर किया जाएगा। शिविर में 12 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। आवेदन फॉर्म 10 मई की शाम यानी आज शाम तक जमा कराने होंगे। शिविर का समय प्रतिदिन सुबह 6:30 से 9 बजे तक संचालित होगा।
1: देखिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और ये सोमवार को मनाया जाएगा और साथ ही साथ जो है यहाँ उदयपुर में यानी कि पूरे राजस्थान में 41 जिलों का चयन हुआ था, उसमें से उदयपुर में महाकालेश्वर में ये पर्व मनाया जाएगा। सुबह 8 बजे से रुद्राभिषेक होगा और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जो है वो लाइव TV पर दिखाए जाएंगे।
0: बिल्कुल।

0: भगवती, बच्चों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है गर्मी की छुट्टियों का। गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए साल का सबसे आरामदायक समय होता है। इस समय स्कूल बंद रहते हैं। अभी हम देखें तो लगभग स्कूल्स में गर्मी की छुट्टियां हो चुकी है, और नहीं भी हुई है तो 15 मई तक लगभग सारे स्कूल्स में छुट्टियां हो चुकी होगी। बच्चे इस दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताते, कोई दादा के घर तो कोई नाना के घर, खेलते हैं, घूमते हैं और अपनी पसंद की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं।
1: बिल्कुल। और अगर इन दिनों की बात करें तो बहुत से जो है कई लोगों के तो दादा नाना जो है एक ही स्थान पर रहते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे अपना सेल्फ जो है अपनी गतिविधियाँ करें, या फिर ऐसा करें कि कुछ नया सीखने को मिले, है ना। और इसी में सहयोग करते हैं ग्रीष्म अवकाश के दौरान लगने वाले समर कैंप।
0: बिल्कुल, इन कैंप में बच्चों को कई रचनात्मक और ज्ञानवर्धक गतिविधियाँ सिखाई जाती है, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, योग, स्विमिंग, कुकिंग और भी कई अदर एक्टिविटीज़ जो बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। यहाँ इन्हें नए दोस्त मिलते हैं, नए माहौल में नई चीज़ें सीखने का अवसर इन्हें मिलता है, साथ ही बच्चे में डिसिप्लिन और टीम वर्क की भावना का विकास होता है।
1: और जहाँ तक बात करें तो चेस भी सीख सकते हैं आप, क्रिकेट भी सीख सकते हैं, डांस, म्यूज़िक, एंकरिंग, तैराकी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत से कोर्स इस जो समर कैंप में हैं वो आयोजित होते हैं।
0: बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां और समर कैंप बच्चों के जीवन को खुशियों और नए अनुभव से भर देता है। यह समय उनके मनोरंजन के साथ उनके व्यक्तित्व विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: उदयपुर की अगर हम बात करें तो म्यूज़िक और डांस की कई कक्षाएं जो है उदयपुर में आयोजित होती है समर कैंप के दौरान, और इनमें लोकला मंडल भी शामिल है, साथ ही साथ शिल्प ग्राम भी शामिल है, अर्बुदा कला मंदिर भी शामिल है, मीरा कला मंदिर भी शामिल है, और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको डांस, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और एंकरिंग जैसे कोर्स कराती है।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओ, आपके घर में या आपके आसपास में जो भी बच्चे आए, उन्हें किसी न किसी एक्टिविटी के लिए प्रेरित जरूर करें।
1: और साथ ही साथ अगर हम समर कैंप के और भी बात करें तैराकी या नृत्य की, तो वो है ना न्यू भोपालपुरा, चित्रकूट नगर और सेक्टर 4।

0: चार से लेकर 14 तक के जो वहाँ पर कितनी ही संस्थाएं हैं, क्योंकि बहुत सी निजी संस्थाएं हैं तो हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप वहां से संपर्क करके, और आप देखते होंगे कि लगातार आपके अखबार में और जगह जगह पर उनके
1: विज्ञापन
0: ऐड भी आते हैं, और साथ ही साथ उसके बारे में बहुत सारी डिटेल भी आती है, तो आप पढ़कर अपनी रुचि के अनुसार उसका चयन कर सकते हैं।
1: जी।

पुरुषोत्तम, आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं इसके बारे में हमें ज़रूर आप लिखें और हम आपके संदेश पढ़कर सुनाएंगे 9:10 से। हमारे फ़ोन नंबर है 9462697568।

0: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश भर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्री सुब्रमणि पदभार ग्रहण करने के साथ ही सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। केंद्र ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को अगला नौसेना प्रमुख भी नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि भारतीय सेना के अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। वे वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे वहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री का हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपये की है। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से ये आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। बोर्ड ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 60 से अधिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और परामर्शदाता भाग लेंगे। ये परियोजना इस साल जुलाई से 6 से 8 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लागू की जाएगी। इसके तहत कल्याण मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं शामिल हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भिवाड़ी में जलभराव की समस्या के निवारण के लिए 34 एमएलडी का एसटीपी प्लांट तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन इसी सप्ताह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। इसके अलावा सीईटीपी से पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डालने का काम भी जल्द शुरू होगा और नेशनल हाईवे 919 की समस्या का भी समाधान जल्द किया जाएगा। श्री यादव कल अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार हर क्षेत्र में प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और वे अलवर जिले के विकास के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे।
1: भिवाड़ी की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पानी की है। हमने 34 एमएलडी का जो संयंत्र है वेस्ट पानी का उसको कंप्लीट कर लिया है और माननीय बालकनाथ जी के साथ जो एक काम पूरा हुआ है इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन करेंगे। पानी को निकालने के लिए जो पाइपलाइन का विषय है उसकी भी पैसा आवंटन करा दिया है और उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा के ये काम हम करेंगे। और जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसका भी हम

0: लोग काम कर रहे हैं वो भी डीपीआर तैयार हो जाएगी, तो सबसे पहला काम तो इसका 2/3 हिस्सा तो अब उद्घाटन हो जाएगा, 1/3 हिस्से का टेंडर हो जाएगा और बाकी बचा हुआ एनएचआई से भी हम जल्दी से जल्दी पूरा कराएंगे।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर के एक दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे पुष्कर क्षेत्र के कडेल गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लेंगे। चौपाल में श्री शर्मा ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री का कल गांव का भ्रमण कर स्थानीय व्यवस्थाओं और विकास कार्यों के अवलोकन का भी कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश भर में आयोजित इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत प्रदेश में राजीनामे के जरिए कुल 46,91,311 मामलों का निस्तारण किया गया। इनमें 7,15,00,00,000 रुपए से अधिक के अवार्ड जारी किए गए। लोक अदालत में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उपस्थित पक्षकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों को तय किया जाता है जिसे पक्षकार का समय और दोनों बचाया जा सके। कई पक्षकारों के बीच सिविल और छोटे आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे आपसी राजीनामे से सुलझाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है। मातृत्व दिवस पर पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज मदर्स डे के अवसर पर पूरा प्रदेश अपनी माताओं के सम्मान में भावनाओं के रंगों से सराबोर है। कहीं बच्चे अपनी माँ को उपहार दे रहे हैं तो कहीं माँ के सम्मान में कार्यक्रम और समारोह रखे जा रहे हैं। माँ वह कविता है जिसे शब्दों में पूरा नहीं लिखा जा सकता। वह घर की धड़कन है जो अपने सपनों को चुपचाप बच्चों की मुस्कान में बुन देती है। उसकी दुआएं जीवन की हर कठिन राह को आसान बना देती हैं। आज का दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि उस अनकहे प्रेम को महसूस करने का अवसर है जो माँ हर दिन बिना किसी अपेक्षा के हमें देती है। आइए इस विशेष अवसर पर हम अपनी माताओं को केवल धन्यवाद ही नहीं बल्कि सम्मान, समय और अपनापन भी दें। प्रदेश की सभी माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक।
1: प्रदेश में मौसम के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। पश्चिमी जिलों में लगातार मौसम शुष्क बने रहने से भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। वहां अधिकतम तापमान एक बार फिर 45 डिग्री तक पहुंच गया है। कल बाड़मेर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस रहा। जोधपुर, बीकानेर, फलौदी और चित्तौड़गढ़ में पारा 43 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बादल गरजने के साथ आंधी चली और बारिश हुई। नागौर के मेड़ता में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के अधिकांश भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
3: आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने लेफ्ट

0: जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया। समग्र बौद्धिक विकास पर आज नई दिल्ली में परामर्शदाता सम्मेलन का आयोजन। प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के जरिए लगभग 47 लाख मामलों का निस्तारण किया गया। और मातृत्व दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में आप सभी का पुनः स्वागत है।
2: फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकार और मेरे साथ आंचल है। और देखिए, आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है इसके बारे में हमें ज़रूर से बताएं। आप संदेश करें व्हाट्सएप ऐप से। हमारे फ़ोन नंबर है 9462697568।
1: बिल्कुल भगवती, और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो मेवाड़ के इतिहास यानी हिस्टोरिकल फैक्ट में आज हम बात करें कालक्रम के अनुसार मेवाड़ के प्रमुख किले, महलों और इमारतों के बारे में। साथ ही देंगे यहाँ की जिलों की जानकारी। तो मेवाड़ अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, भव्य किलों, जय और सुंदर महलों के लिए फेमस है। यहाँ के स्थापत्य में राजपूत वीरता, कला और संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है।
2: ये झलक जो है बरसों से चली आ रही है और ये करीब कहें तो 7वीं शताब्दी से शुरू है। और 7वीं शताब्दी की अगर बात करें तो चित्तौड़गढ़ किला मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने निर्मित किया था और 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मान मौर्य को हरा कर इसे अपनी राजधानी बनाया था।
1: रावल ने मान मौर्य को हरा कर इसे राजधानी बनाया और ये भारत का सबसे बड़े किलों में से एक है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, जिसे मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, किलों का सिरमौर, राजस्थान का घोरव और राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार आदि उपनामों से जाना जाता है।
2: साथ ही साथ 8वीं शताब्दी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था और ये कैलाशपुरी में निर्मित है। और आहड़ या आहड़ मंदिर की बात करें तो 951 से 971वीं ईस्वी में रावल अल्लट द्वारा निर्मित या सारणेश्वर मंदिर और वराह मंदिर का निर्माण करवाया गया था।
1: बिल्कुल, साथ ही बात करें त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ की, तो इसका निर्माण 1030 ईस्वी में परमार राजा भोज द्वारा किया करवाया गया था, जिसका मोकल ने जीर्णोद्धार करवाया।
2: और त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़, इसका निर्माण 1000 ईस्वी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित मोकल ने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था।
3: बिल्कुल, इस दुर्ग की आकार की बात करें तो इसका आकार जो है वेल मछली के समान है और यह एकमात्र दुर्ग है जहां खेती भी की जाती है।
2: और अब जो अगर बात करें 13वीं से 16वीं शताब्दी की, तो पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ था और महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा इसका निर्माण वो माना जाता है। साथ ही साथ कुंभलगढ़ किला 1448 से 1458 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था कुंभा द्वारा और इसके वास्तुकार मंडन थे और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है।
3: बिल्कुल, साथ ही बात करें इमारतों की तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दो इमारतें हैं, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ जिसे 1440 से 1448 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा महमूद खिलजी मालवा के विजय की स्मृति में बनाया गया था और कीर्ति स्तंभ जिसे 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य या जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित स्तंभ है।
2: 1550 ईस्वी में उदय सिंह द्वितीय ने उदय सागर झील का निर्माण कराया था और ये 4 किलोमीटर लंबी और 2.5 किलोमीटर चूड़ी झील है। और उत्तर मध्यकालीन और आधुनिक युग की अगर हम बात करें, यानी कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का समय, तो उसमें उदयपुर शहर और पिछोला का महल महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उदयपुर को नई राजधानी के रूप में बसाया और पिछोला झील किनारे सिटी पैलेस की नींव रखी।
3: बिल्कुल, और बात करें जग मंदिर पैलेस की तो 1620 से 1652 ईस्वी में महाराणा करण सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई और जगत सिंह फर्स्ट ने इसे पूर्ण किया।
2: 1680 के दशक में महाराणा फतेह सिंह ने फतेह सागर झील का निर्माण कराया। यह कृत्रिम झील

0: यह जो पिछोला के उत्तर में स्थित है।
1: साथ ही बात करें 17वीं शताब्दी में, तो यह भारत की जयसमंद झील, जो भारत की दूसरी और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसका प्राचीन नाम ढेबर झील है और इस झील का निर्माण महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवा कर करवाया था।
0: राजसमंद झील का निर्माण कराया था महाराणा राज सिंह ने, और यहाँ प्रसिद्ध नौ चौकी और राज प्रशस्ति, विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख स्थित है।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा राजसमंद में नंद सम्मन झील भी स्थित है।
0: शैलियों की बाड़ी, जग निवास, सज्जनगढ़ पैलेस, बहुत से जो है मॉन्यूमेंट हमारे इस लिस्ट में शामिल है।

0: देखिए, आज मनाया जा रहा है मदर्स डे, और अगर हम बात करें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आज 10 मई है और आज के दिन इसकी बरसी मनाई जाती है, तो इसकी शुरुआत तो मंगल पांडे ने की थी, लेकिन इसमें एक मातृत्व जो है वो भी झलका था, और वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने अपने पुत्र के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया और 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया।
1: बिल्कुल भगवती, 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय सैनिकों और जनता द्वारा किया गया था। इस क्रांति की शुरुआत मेरठ यूपी से हुई थी, यहाँ से यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी आदि जगहों पर फैल गया।
0: इसके कई कारण थे, राजनीतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे और सैनिक कारण भी थे। राजनीतिक

0: की बात करें तो अंग्रेज़ों की लेप्स नीति से कई रियासतें छीन ली, और इसके साथ ही आर्थिक कारणों की बात करें तो भारी कर व्यवस्था और किसानों का शोषण इसका मुख्य जिम्मेदार था। सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करें तो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप का भय और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों में असंतोष जैसी कई कारण सामने आए थे। सैनिक कारण में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव और एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह ने भी इस आग को भड़काया।
1: बिल्कुल, इस क्रांति के प्रमुख नेताओं की अगर बात करें तो मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और बहादुर शाह जफर थे। और क्रांति के परिणाम की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस क्रांति के बाद समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। यह क्रांति भारत की स्वतंत्रता की पहली बड़ी लड़ाई थी, लेकिन यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इस क्रांति ने भारत के लोगों में आज़ादी की चिंगारी जला दी, जिसने अंततः वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता दिलवाई।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, मंगल

0: बाद समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया था। यह क्रांति भारत की स्वतंत्रता की पहली बड़ी लड़ाई थी, लेकिन यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इस क्रांति ने भारत के लोगों में आज़ादी की चिंगारी जला दी, जिसने अंततः वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता दिलवाई।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर से किया था, नाना साहब ने कानपुर से इसका नेतृत्व किया था, और तात्या तोपे ने गुरिल्ला युद्ध के मार्फत इसका जो है नेतृत्व किया था, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, और कुंवर सिंह ने बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था। तो इन नेताओं के पीछे ये पूरा आंदोलन चला और एक आज़ादी की लो सभी को नजर आई।
0: जी,
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, भारत ये।

मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार।

एक दूसरे मैसेज में कमल सुहालकर के साथ परमानंद कुमावत है और ये लिख रहे हैं कि पिछोला झील के बारे में दी गई जानकारी सटीक है और ऐसे ही जानकारियाँ आप हमें देते रहें।

0: भगवती कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर हमारे श्रोता सुन रहे हैं और श्रोता संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं सुनील जैन, प्रियंका जैन, चित्रांगदा नवलतारा पार्श कॉलोनी संतोष नगर घारियावास उदयपुर से। इन्हें प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा, समर कैंप की जानकारी और मातृत्व दिवस पर जो प्रोग्राम इन्हें काफ़ी अच्छा लगा और जानकारी भी काफ़ी उपयोगी लगी।
1: बिल्कुल, और एक मैसेज मेरे पास है कमल सुहाल का, हितेश सुहाल का, डिम्पी सुहाल का, श्वेता सुहाल का, और ये लिखते हैं कि माँ हमारी संस्कृति है और माँ पर आपका दिया गया प्रोग्राम हम हमेशा याद रखेंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने दिया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: एक और मैसेज हमारे पास पहुँचा है किरण कुमावत का, जो खम्मा गनी करके हमसे हैप्पी मदर्स डे की शुभकामनाएं दे रही है। नमस्कार उदयपुर प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें आप वीकेंड की सारी जानकारियां देते हैं, आप जो आपने ग्रीष्मकालीन शिविर की जो जानकारी इन्हें दी है वो इन्हें काफ़ी अच्छी लगी, धन्यवाद कहती है।

0: बिल्कुल, घड़ी की सुइयां जो है अब हमें अनुमति आगे बढ़ने के लिए नहीं देती है, तो हम लेते हैं इस गीत के साथ अनुमति। आज मैं था आपके साथ आपका दोस्त भगवती लक्षकर,
1: और मैं आंचल।
0: तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत की पहली प्रस्तुति चंदन दास की आवाज़ में।

सुगम संगीत का लुत्फ आप उठा रहे आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

0: जगजीत सिंह की गाई ये गज़ल अभी आपने सुनी, और सुगम संगीत की आखिरी प्रस्तुति पंकज उदास की आवाज़ में।
1: अहमद फराज की एक ताज़ा गज़ल पेश खिदमत है। यह गज़ल आपको ज़रा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।

पंकज उदास की गाइस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गाने पुरानी फिल्मों से।

माँ कोई भाषा नहीं, माँ की कोई परिभाषा नहीं, माँ तो बस एहसास है जिसमें बसता हमारा पूरा संसार है, जिसमें बहती गंगा जमुना की निश्चल धारा। माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वह तो घर की रौनक और जान होती है, और होती है सारा जहाँ हमारा। मातृत्व दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और कार्यक्रम पुरानी फिल्मों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आंचल। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से आकाशवाणी उदयपुर से, जिसे आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर।

कई भरोसो जिंदगानी रो, कई भरोसो जिंदगानी रो, हे मनख बुलबुलो पानी रो। अणी संसार में आपा सब पानी रा बुलबुला हाँ, तो हिल मिलने रेवा, एक दूजारा दुख सुख में शामिल वेवा। अणी संदेश रा लारे अबे अनुमति दो आपरा दोस्त भगवती लक्षकार ने। राम राम सा खमा गणी।

राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुगम संगीत श्रोताओं। इस कार्यक्रम में आज कलाकार पंकज उदास।

सुगम संगीत प्रोग्राम में आज आपने पंकज उदास को सुना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। हमारे नन्हे मुन्ने अब सुनेंगे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बगिया के फूल।

0: जय हिंद बच्चों। सरिता आज तो बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनकर आई, बड़ी सुंदर लग रही है, क्या बात है
1: भाई। बात तो होगी ही, आज कुछ बहुत ज्यादा खास है। और जैसे ही आज सुबह उठी हूँ ना, तो बच्चों ने मेरे दिन को इतना अच्छा कर दिया, क्योंकि आज है मदर्स डे। तो भाई मम्मियों को अच्छा तो लगना ही पड़ेगा भाई, बच्चों ने इतने प्यार से जो उनका आज का दिन है उसको सजाया है, तो मम्मियाँ तो कितनी ज्यादा खुश हो जाती भाई। एक वैसे तो कोई दिन माँ के बगैर नहीं हो सकता है, बट एक दिन जो माँ को फील स्पेशल करवाता है
0: वो होता है मदर्स डे। और सरिता मैं भी तुम्हें बताना चाहूंगी कि भाई मेरे बेटे ने भी मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान किया। और सुबह जब मैं उठी तो मेरे पलंग के पास एक प्यारा सा गिफ्ट, चॉकलेट्स रखे हुए थे। जब मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई बच्चों को याद है कि आज मदर्स डे। हम मानते हैं कि बच्चे हमेशा ही प्यार करते हैं, लेकिन एक खास दिन हमने तय कर लिया है कि भाई उस दिन माँ को एक अच्छा सा उपहार दे, उनके मनपसंद काम करें, उनको ये एहसास कराए कि आज का दिन सिर्फ और सिर्फ उनके लिए
1: है और आप बहुत स्पेशल हो भाई। क्यों नहीं कहा जाएगा भाई माँ का, मतलब क्या बोले, शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसी सारी चीजें होती है माँ के, जो माँ के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि भाई जिनके आंचल में संस्कृति की नदियां बहती है, जिसके आशीर्वाद से संस्कारों की बारिश होती है, जो पूरे साल किसी न किसी रूप में पूजी जाती है, हर सुबह जिसके सजदे में आंखें झुक जाती है, लिखते लिखते कहानी न जाने कब उपन्यास बन जाती है, स्याही खत्म हो जाती है, कलम भी थक जाती है, फिर भी जिसके बारे में लिखने की चाहत कभी खत्म नहीं होती, बस वही तो एक शब्द में सिमटी सबसे बड़ी कहानी होती है माँ।

0: बहुत अच्छी बात बताई सरिता आपने, और मैं भी दो लाइन कहना चाहूंगी कि मुस्कुराता है बच्चा, मुस्कुराता है बच्चा सुकून पाती है माँ, रोता है बच्चा दुखी होती है माँ। ये बिल्कुल सही बात है, जब हमारा बच्चा खुश होता है तो माँ भी बहुत मुस्कुराती है, बहुत खुश होती है। जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है या बच्चे कोई प्रॉब्लम में होता है तो माँ सबसे पहले दुखी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है सरिता कि मेरा बेटा जब बीमार होता है, कई बार कहता है मम्मा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तुम बिलीव नहीं करोगी बच्चा सो जाता है, उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आती है, सोच के न जाने मेरा बच्चा किस परेशानी से क्या दर्द हो रहा है।
1: कई बार कब उठ के मुझे कहे कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो हमें नींद भी नहीं आती।
0: और पता है बहुत कुछ अच्छा बनाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कैसे खा सकता है, उसको क्या पसंद है, इन चीजों का बहुत ध्यान रखती है माँ।
1: ये बात कहे ना तो आज की मतलब इस चीज में तो बहुत क्रिएटिव है, उनको कैसे भी खिलाना है। जैसे आजकल वेजिटेबल्स वो खाते नहीं है, लेकिन किसी न किसी रूप में, चाहे पीस के देंगी, चाहे पराठे के रूप में देंगी, कैसे भी देंगी, खिलाना है पौष्टिक खाना जो मदद। बिल्कुल,
0: तभी तो कहते हैं माँ तुम्हें सलाम। भाई माँ को सलाम यूं ही थोड़ी करते हैं, देखो सरिता हम भी मदर हैं और हमारी भी मदर है। हमारी मदर भी उस टाइम में हमारा बहुत ध्यान रखती थी, बहुत कुछ करती थी, बहुत क्रिएशन था और बहुत कम चीजों में बहुत अच्छा करती थी। आज हमारे पास साधन बहुत ज्यादा है तो हम भी बहुत कुछ अच्छा करते हैं, बच्चों के टेस्ट का ध्यान रखते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, इवन हम बच्चों की पढ़ाई में भी उनका बराबर ध्यान रखते हैं।
1: पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कई बार आजकल देखा जाता है ना कि खाली पोस्ट के लिए, जैसे आज मदर्स डे ना तो कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं तो सिर्फ पोस्ट करने के लिए अपनी माँ के पास जाते हैं, सेल्फी या कुछ भी फोटो खींचेंगे और वो उनके साथ उसे पोस्ट कर देंगे। लेकिन रियल में कई बार अपन माँ को ऐसा भी कह देते हैं कि आप कुछ समझते नहीं हो, हम बड़े हो गए, हम हमारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं, आप हमारे साथ नहीं ऐसा कर सकते। तो बच्चों सिर्फ एक दिन सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए
0: ऐसा ना करें।
1: फीलिंग जो होती है माँ की वो उसे समझे, वो हमेशा आपका अच्छा चाहती है। और आपको कोई चीज समझानी है तो आप उन्हें जरूर प्यार से समझा सकते हैं, लेकिन चिल्ला कर कि आप समझते नहीं है तो, लेकिन बच्चों उन्होंने आपको बड़ा किया है तो ये तो आप समझ गए कि वो आपसे ज्यादा समझदार,
0: ज्यादा अनुभवी। और भाई देखो सरिता, हम तो कहते हैं कि माँ तो प्रथम पाठशाला, प्रथम गुरु ही माँ है। और जब बच्चा ये कहता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, माँ को बहुत दुख होता है। तो हम बच्चों से कहेंगे कि बिल्कुल अपनी माँ का सम्मान करें, सिर्फ एक दिन मदर्स डे पे नहीं, हमेशा करें, रोज करें। माँ आपकी गुरु है, माँ आपकी मार्गदर्शक है, और माँ का कहना हमेशा माने। माँ जो कर रही है, जो कह रही है, वो आपके लिए सर्वोत्तम है। माँ से बढ़िया दुनिया में कोई गुरु, कोई दोस्त, कोई गाइड हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है माला दीदी ने बच्चों, कि इस गाइड को आप जब जब यूज करेंगे ये आपको हमेशा फायदा ही देती है, सिर्फ आपके बारे में सोचती है। क्योंकि कहा भी गया ना कि कितना अनमोल रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। जैसे ही माँ की गोदी में बच्चा आता है मतलब उसकी दुनिया सारी चेंज हो जाती है, एक उसी में सिमट कर रह जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम फिर कहेंगे कि माँ तुम्हें सलाम। माँ की जो दुआएं हैं, माँ की जो सीख है, माँ का जो मार्गदर्शन है, वो दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता। माँ जैसा गाइड, माँ जैसा गुरु, माँ जैसा पथ प्रदर्शक हमें कहीं नहीं मिलेगा। माँ की जो सलाह होती है वो निष्पक्ष होती है, बिना किसी लालच के।
1: बिल्कुल,
0: तो माँ को फिर सलाम करेंगे, हैप्पी मदर्स डे सब बच्चों को बोलेंगे और बच्चों से कहेंगे कि मदर्स डे पे एक संकल्प लें कि माँ का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों के साथ अच्छे से पेश आए, अपनी वाणी को अच्छे से नियंत्रित संयमित वाणी का यूज करें। और सरिता बच्चों को एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कितने प्यारे से गीत के बाद सब इसी गीत में खो गए होंगे, क्योंकि जब माँ बच्चों को इतना प्यार लाड़ प्यार करती है और जब वो बेटा या बेटी कहकर बुलाती है तो बच्चों को कितना अच्छा लगता है, मतलब सुनने में माँ को भी तो कितना अच्छा लगता है। जैसे फर्स्ट बार जब बच्चा माँ बोलता है ना तो उसकी कई बार माओ की आंखों से आंसू भी झलक जाते हैं,
1: वो खुशी के आंसू होते हैं।
0: बिल्कुल
1: सरिता, माँ और बच्चे का रिश्ता एक अनोखा रिश्ता है जिसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है।
0: बिल्कुल सही है। ऐसे ही बच्चों आज की जो ओबी रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं वो भी ऐसी ही रिकॉर्डिंग है, एक मदर से बात की है माला दीदी ने, तो आइए सुनवाते हैं आपको ये ओबी रिकॉर्डिंग।

0: बच्चों, आज हमारे साथ हमारी एक खास मेहमान है, उनसे बहुत सारी बात करेंगे। नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
0: मैडम अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम प्रियंका है। मैं
0: प्रियंका जी आप क्या करती हैं?
1: एक होम मेकर हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि बच्चों के लालन पालन के लिए कभी जॉब के बारे में सोचा ही नहीं।
0: अरे बहुत अच्छा किया आपने। एक अच्छी मदर वही होती है जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने बच्चों को दे सके। प्रियंका जी आज हम बात भी आप पर बात जो करेंगे वो मदर्स डे के बारे में करेंगे, परिवार दिवस के बारे में करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना कि मई का दूसरा संडे मदर्स डे होता है।
1: जी
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: कहना, आप मुझे अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं।
1: दिनचर्या रोज का वही रूटीन होता है, जैसे सुबह उठना, अपना थोड़ा रूटीन वर्क करना, थोड़ा योगा करना, उसके बाद टिफिन में अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, फिर लंच तैयार करना, थोड़ा सा म्यूजिक सुनने का शौक है तो बीच-बीच में वो भी कर लेते हैं।
0: ये
1: और
0: तो बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं प्रियंका जी आप, कि पूरा दिन आप व्यस्त रहती है परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए। आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है और हस्बैंड, हम चार मेंबर हैं।
0: 4 मेंबर हैं, लेकिन आप पूरा दिन उन्हीं के लिए काम करती है। और देखो होता भी है प्रियंका जी, आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम भी अपना सारा समय मोस्टली परिवार को, बच्चों को, पति को, रिश्तेदारों को, इन्हीं में हमारा सारा समय लग जाता है।
1: जी
0: प्रियंका जी आप मदर्स डे पर क्या करती हैं?
1: मदर्स डे पर मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं खुद एक माँ हूँ और मेरा सारा समय अपने बच्चों के लिए है, और मतलब सुबह से लेकर रात तक सिर्फ उनके लिए ही मेरा है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद माँ होके भी मुझे भी कभी अपनी माँ की जरूरत महसूस होती है। कभी
0: हाँ
1: कभी एक ऐसे भी पल आते हैं जब खुद को भी लगता है कि हाँ नहीं, मुझे भी मेरी माँ चाहिए। तो
0: हाँ
1: जिस तरह से मतलब मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, उसी तरह मुझे भी अपनी माँ की कभी कभी जरूरत महसूस होती है।
0: हाँ जी
1: तो
0: नहीं प्रियंका जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मदर्स डे को आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? क्या करती हैं आप अपने बच्चों के लिए, क्या करती हैं आप अपनी माँ के लिए?
1: बच्चों के लिए वही कि ठीक है, बच्चों के लिए कुछ उनके लिए स्पेशल करती हूँ। कई बार बच्चे भी मेरे लिए स्पेशल करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ,
0: हाँ जी
1: क्योंकि उन्हें लगता है मदर डे पे आजकल का तो चलन ही यही है कि आजकल बच्चे भी बहुत अवेयर हो चुके हैं, तो वो भी मेरे लिए भी करते हैं। मैं अपनी माँ के लिए क्या करती हूँ, कभी मैं उनको घुमाने ले जाती हूँ, कभी कुछ उनको गिफ्ट कर देती हूँ।
0: हाँ मतलब ये कि माँ को भी एहसास होना चाहिए कि आज खास दिन है, मेरे बच्चों ने मेरे लिए कुछ किया। वैसे तो माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए हमेशा रोज ही करती है, लेकिन कभी कभी हमें भी अपना समय निकाल कर अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और हमारे लिसनर सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं कि माँ के लिए भी हमें, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, पूरा करना चाहिए। प्रियंका जी आपकी हॉबीज क्या है?
1: मेरी हॉबीज वैसे मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे गाने सुनने पसंद है, और कभी कभी मूवी भी देख लेती हूँ। कुछ
0: आप खाने में क्या अच्छा बना लेती हैं?
1: साउथ इंडियन बना लेती हूँ, मुझे छोले भटूरे बनाने का शौक है, आलू के पराठे बनाने का शौक है। मोस्टली जैसे बच्चों की डिमांड पे मैं उनके लिए पास्ता पिज्जा भी बना देती हूँ।
0: मतलब आप ये सब कुछ अच्छा बना लेती हैं, तो हम लोग कब आ सकते हैं आपके घर?
1: जब आप चाहो।
0: प्रियंका जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से खाना बना लेते हो, बच्चों की देखभाल अच्छे से करते हो। आप अपने लिए समय कैसे निकालते हो, क्या करते हो अपने लिए?
1: वैसे तो अपने लिए समय निकालना लगता है कि शायद निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चों का ही रूटीन इतना हो जाता है कि आजकल अब क्या बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, एक स्कूल में पढ़ती है, एक कॉलेज जाने वाला है, तो थोड़ा सा रूटीन उनका भी चेंजेस है, तो उनके रूटीन के हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। बस ये है कि हाँ, शाम को थोड़ा वॉक हो जाता है, कभी कभार घूमने चले जाते हैं, बच्चों के साथ आउटिंग भी कर लेते हैं।
0: हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं ना प्रियंका जी कि मन का बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। बहुत अच्छी बात बता रही हैं प्रियंका जी आप। प्रियंका जी आप कोई ऐसी घटना हमें बताएं, या कोई ऐसे आपकी मेमोरेबल डे हो जो आप याद करके रोज, जब भी आप याद करते हो तो आपको लगता हो बहुत खुश हो जाती हो, ऐसा कोई दिन, ऐसी कोई घटना जो आप हमें सुनाना चाहें?
1: मेरे लिए सबसे मेमोरेबल तो मेरे लिए वो दिन था कि जब

0: मैं खुद माँ बनी, क्योंकि वो मेरा, मुझे लगा कि मेरा खुद का दूसरा जन्म हुआ है एक तरीके से
1: जी,
0: कि एक नई लाइफ शुरू हुई, कि मैंने उसके बाद अपने आप को, एक होता है ना कि एक शादीशुदा लाइफ के बाद आप एक माँ की एक नई जनरी तैयार करते हैं कि हाँ आप खुद एक जिम्मेदार है अपने बच्चों की छोटी छोटी चीजों के लिए। तो वहां से वो नया पल जब शुरू हुआ तब लगा कि हाँ, कि जिम्मेदारियों के साथ एक खुशी का एहसास, एक डर भी लगता था कि छोटे बच्चे को मैं कैसे पालूंगी। और समय बीतता गया और आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि पता ही नहीं चला।
1: मतलब बिल्कुल बिल्कुल भाई, न्यूली मदर जब बनते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, जिम्मेदारियों का एहसास होता है, कभी कभी बहुत खुशी होती है तो कभी कभी डर भी लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारी जिम्मेदारी से कहीं हम चूक हो जाए। लेकिन जैसा कि आप बता रही हैं कि आज आपका बेटा बड़ा हो गया, कॉलेज में जाने लायक हो गया, बड़ा अच्छा लगता है, वो दिन आपके लिए बहुत मेमोरेबल रहा। बिल्कुल, माँ बनना एक सुखद एहसास है, हर हर स्त्री का एक सपना होता है कि जब वो माँ बनती है, जीवन का सबसे हसीन पल होता है। अच्छा प्रियंका जी, आपका बेटा और बेटी दोनों हैं आपके पास, तो दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन आपकी केयर ज्यादा करता है, कौन आपकी बात ज्यादा मानता है?
0: बच्चे तो दोनों ही काफी समझदार हैं, पर लगता है बेटी ज्यादा समझदार है।
1: वो कैसे?
0: क्योंकि अपने आप में एक माँ का जो अटैचमेंट होता है, मैं मानती हूँ कि वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब मैं दोनों में कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी बेटी मुझे ज्यादा अच्छे से समझती है। एक्चुअली क्या, मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद बेटी आपकी बेटी नहीं होती, वो आपकी फ्रेंड हो जाती है। आज हम शॉपिंग पे जाते हैं तो मतलब उसकी चॉइस से मैं चीजें खरीदती हूँ। मुझे लगता है कि वो, हाँ, वो यदि उसने मुझे बोला मम्मा ये लेना है तो इट मीन्स वो बहुत अच्छी चीज होगी। क्या बेटों को क्या इतना है, उन्हें ही होता है कि वो मम्मा के साथ जाए शॉपिंग करे, कुछ नहीं, लेकिन बेटियों को बहुत होता है।
1: बिल्कुल, आप ये कहना चाहती हैं कि बेटे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते, और बेटियां हैं जो खुलकर व्यक्त करती हैं, अपनी माँ को बताती हैं कि हमें आपकी परवाह है, आपकी केयर है, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। यही बात है ना प्रियंका जी?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: प्रियंका जी, आप अपनी मम्मी, जब कभी आप परेशान होती हैं तो सबसे पहले आप किसे याद करती हैं?
0: जब मैं परेशान होती तो ऑब्वियसली मुझे अपनी माँ ही याद आती है सबसे पहले, क्योंकि एक होता है ना, एक बेटी का अपनी माँ के प्रति बहुत अटैचमेंट होता है। और जब भी कोई परेशानी होती है या कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है फैमिली में, कोई चीज भी होती है, तो लगता है कि नहीं, मुझे अपनी माँ की जरूरत है।
1: तो हाँ बिल्कुल, और माँ जैसी गाइड सलाहकार तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। माँ जो आपको सलाह देगी, जो मार्गदर्शन देगी, वो दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात बता रही है कि माँ जैसी दुनिया में कोई दोस्त नहीं, माँ जैसा कोई गाइड नहीं, माँ जैसा कोई मार्गदर्शक नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने प्रियंका जी। मैं भी आपको ये बताना चाहूंगी, अब तो मेरे पास माँ नहीं रही, लेकिन जब माँ थी और जब मुझे कोई परेशानी होती थी तो माँ से जरूर डिस्कस करते थे, माँ से जरूर सलाह लेते थे।
0: जी जी।
1: अच्छा प्रियंका जी, आपको पता ही होगा कि 15 मई को हम परिवार दिवस भी मनाएंगे, तो एक परिवार पूरी तरह से बंधा रहे इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए?
0: इसके लिए आपस में प्यार का होना सबसे पहले जरूरी होता है। प्यार, विश्वास, साथ में एक दूसरे की इज्जत करना, भरोसा करना।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि परिवार का नाम ही प्यार, सहयोग, दया भावना, अपनत्व की भावना, जब ये हम में रहेगी तो परिवार वास्तव में बंधा रहेगा, और जिस दिन ये भावनाएं हमसे टूटती गई परिवार भी बिखर जाएगा। आप परिवार के लेके आप कितना मतलब पॉजिटिव हैं अपने परिवार को लेके?
0: मैं तो बहुत ज्यादा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है परिवार ही मेरी पूरी दुनिया है। मेरी पूरी लाइफ इन्हीं के ही आगे पीछे निकल जाती है, समय पता नहीं कब कैसे निकल जाता, पता ही नहीं चलता है।
1: प्रियंका जी, हम ये चाहेंगे कि आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं एक ही संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वो अपनी इच्छाओं को पूरी करे, उसके साथ साथ वो स्वस्थ रहे, ताकि वो स्वस्थ रहेगी तो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी। इसलिए उनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, खुशहाल रहे।
1: बहुत अच्छी बात बताई प्रियंका जी आपने, बिल्कुल, यदि महिला स्वस्थ रहेगी और मस्त रहेगी, व्यस्त रहेगी, तो अपने परिवार को भी जोड़ के रखेगी, परिवार का ध्यान अच्छे से रख पाएगी। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच
0: जी, शुक्रिया।
2: अभी अभी बच्चों, जो आपने ओबी रिकॉर्डिंग

सुनी है वो मारा दीदी ने की थी, प्रियंका जी जो कि एक मदर है, और उन्होंने सारी जो जानकारियां दी है वो मदर्स डे पर ही दी है। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पन्नों के फूल खिलाएंगे,
1: मिटने न देंगे इस घर को, इस घर पर हम मिट जाएंगे,
0: इस घर पर।

0: सरिता, ये
1: हाँ
0: तो बहुत अच्छा सुनवाया है तुमने।
1: बिल्कुल
0: भाई परिवार का नाम ही खुशी, हंसी, प्यार, संस्कार, ये सब परिवार के नाम पर है। और देखो ना सरिता, कि जो हम परिवार दिवस 15 मई को मनाने
1: हाँ
0: वाले हैं
1: हाँ
0: उसके बारे में हमने आज ही बच्चों से बातचीत की है। बच्चों को
1: बिल्कुल
0: हमने जो ओबी में भी जो बातचीत
1: परिवार,
0: की, हाँ
1: हाँ
0: परिवार के बारे में बातचीत की। और परिवार के बारे में मुझे पता है कि तुम 2 लाइन कहना चाह रही हो।
1: बिल्कुल। अगर हर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को समझे तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। और परिवार ही वह नींव है बच्चों, जिस पर हमारे व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है।
0: इसलिए परिवार के साथ रहे, परिवार का कहना माने, परिवार में माता पिता भाई बहन जो भी हैं। कहते हैं ना सरिता, जो
1: हाँ
0: पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं वो सूख जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना। जो बच्चा, जो व्यक्ति परिवार से अलग हो जाता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे
1: धीरे,
0: सूखते जाता। सूखने का मतलब ये है कि वो
1: हाँ
0: कटता चला
1: कटता
0: जाता है।
1: चला जाता है
0: देखो
1: बिल्कुल।

0: देखो सरिता, जो हमारी ज्वाइंट फैमिली हुआ
1: हाँ,
0: करती थी
1: हाँ,
0: उसमें व्यक्ति कितना खुश रहता था,
1: बिल्कुल
0: एक की परेशानी सब झेल
1: परेशानी।
0: हाँ,
1: और आजकल अकेले रहने का इतना हो गया, तो वो एक ही इंसान उस परेशानी से जूझता है तो देखो ना, डिप्रेशन में कितनी सारी मेडिसिन उनकी चालू हो जाती है।
0: इसका तो कारण यही तो है कि वो एकल परिवार में रहते हैं,
1: इसीलिए तो कहते हैं भाई अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर किया करो, अपने अंदर मत रखा करो। इसीलिए तो परिवार होता है, और है बच्चों, परिवार को यूज भी करना आना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आपकी बनती है आप उससे अपनी परेशानियां
0: शेयर करो। बिल्कुल, अपने रिश्तों को मजबूत करो,
1: बिल्कुल
0: परिवार में प्रेम प्यार बढ़ाओ। और देखो सरिता, बातें तो हम बहुत सारी करेंगे, लेकिन अब समय भी हो चला है,
1: बिल्कुल
0: तो इजाजत ले लें,
1: ले लेते हैं।
0: जय हिंद बच्चों।

हमारे नन्हे मुन्ने अभी सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बगिया के फूल। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। और इस फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं खुद्दार फिल्म का गाना, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ में।

किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज़ में अभी आपने जाबाज फिल्म का नगमा सुना। लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है खुदा गवाह।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है, हमारे जयपुर केंद्र से सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार, बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। कुछ थोड़ी ही देर में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के संस्थापक सी जोसेफ विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। श्री विजय की टीवी के पार्टी को 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें मिली हैं और उन्होंने 120 विधायकों का समर्थन जुटाया है। श्री विजय 1967 के बाद राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी भी द्रविड़ पार्टी से नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक रूप से दी जाने वाली राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार समावेशी और समान शिक्षा के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में करीब 150 साल पुरानी फतेह सागर और भूतनाथ तालाब अब नए स्वरूप में नजर आएंगे। केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत करीब 1,38,00,000 रुपए की लागत से दोनों तालाबों के कायाकल्प का काम शुरू हो गया है। परियोजना के तहत तालाबों के घाटों और सीढ़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तालाबों के जीर्णोद्धार से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश भर में आज मातृत्व दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि ममता, त्याग और समर्पण की सबसे पवित्र भावना है। उन्होंने कहा कि माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है जो हमें संस्कार, साहस और सही मार्ग पर चलना सिखाती है।

0: प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तेज गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रहा, जैसलमेर में 45, फलौदी में 44.8, जोधपुर में 43.9, चित्तौड़गढ़ में 43.8 और बीकानेर में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। विभाग ने आज जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक पश्चिमी जिलों में तेज गर्मी और लू चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी जिलों में इसके विपरीत आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। बहनों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: रुके तो चांद जैसी है, चले तो हवाओं जैसी है, वो माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है। इन्हीं शब्दों के साथ स्वीकार कीजिए महिला जगत कार्यक्रम में रिमी नंदी और
1: अर्चना का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मदर्स डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और दुनिया की सभी माताओं को हमारा शत शत नमन। तो मदर्स डे में हम मदर्स को खुश तो करेंगे ही, तो उनको खुश करने का एक रास्ता तो हमारे पास सदा ही रहता है, तो हम अपनी मदर्स को सुनाएंगे उनका एक पसंदीदा गीत। उम्मीद है आपको गीत जरूर पसंद आएगा।

0: रिमी, गाना तो आपने हमारी महिलाओं को बहुत ही अच्छा सा सुनाया और मुझे यकीन है कि सभी मदर्स को पसंद आया होगा, क्योंकि मदर्स डे माँ को समर्पित विशेष दिन है और माँ निस्वार्थ प्यार और समर्पण की मिसाल है जो हमें बयां करने की भी ज़रूरत नहीं है। माँ अपने बच्चों को सपनों के लिए खुद नींद, प्यार, चैन सब गंवाती है ना रिमी?
1: बिल्कुल सही। अब अगर हम माँ के बारे में बात करें तो हमारे कार्यक्रम का समय काफ़ी छोटा लगेगा। माँ की गाथा अगर हम गाएं तो उसका कोई अंत नहीं है। और ऐसे ही एक माँ के बारे में बताऊंगी, थॉमस एल्वा एडिशन का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था। और उनके बारे में अगर हम कहें तो ऐसा कहा जाता है कि जब वे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा समझदार या बुद्धिमान बच्चा तो माना नहीं जाता था। तो उनके शिक्षकों ने उनको मंदबुद्धि कहकर या मूर्ख कहकर उनको स्कूल से निकाल दिया था। और पता है अर्चना, कुछ ऐसा हुआ था कि उनके हाथ में एक पत्र दिया गया था और कहा गया था ये अपनी मम्मी को तुम्हें देना है। और घर आकर एडिशन साहब ने अपनी माताजी को वह पत्र पकड़ाया और फिर उसने माँ से पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है। तो पता है माँ का झूठ भी काफ़ी महंगा होता है। अब
0: जी
1: आगे हम
0: हाँ,
1: सुनेंगे तो हमें समझ में आएगी बात। तो माँ ने झूठ कह दिया। माँ ने कहा, बेटा इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, और इसको पढ़ाने के लिए हमारे विद्यालय में योग्य शिक्षक नहीं है, तो आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। ऐसा कहकर माँ ने बात को

0: वहीं ख़त्म कर दी। और उसके बाद उन्हें स्कूल नहीं भेजा, फिर घर पर ही अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, घर पर ही एक छोटा लैब बना दिया जहाँ पर वे अपने छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जो गतिविधियाँ थी, जो वैज्ञानिक गतिविधियाँ थी, वो करते रहते। और ऐसे करते करते उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार भी कर दिया। फिर बड़े बड़े होने पर जब एडिशन साहब गुजर उनकी माता जी जब गुजर गई, तब एक दिन माँ को याद करते करते उन्होंने अपनी अलमारी खोली और उस अलमारी में वही पुराना पत्र जो उनके स्कूल से भेजा गया था वह मिल गया। और जब उस पत्र में उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि आपका बेटा बहुत मूर्ख है या मंदबुद्धि है, या स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने के लायक नहीं है। जब यह पंक्तियाँ उन्होंने पढ़ी और असलियत का पता लगा, तो तब माँ की अहमियत उनके नज़रों में और भी दुगुनी और चौगुनी हो गई। तो ऐसी होती है हमारी माँ।
1: जी बिल्कुल रीमी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक माँ अपने ही बच्चे के लिए कभी भी कहीं पर भी नहीं सुनती है। ये सच कहा है किसी ने कि दुनिया की किसी भी कोने में आप चले जाओ, आपको हर जगह कहीं अहिंसा हिंसा कहीं पर प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन एक माँ होती है जो निस्वार्थ प्रेम करती है, वो कभी बदले में कुछ भी नहीं मांगती अपनी औलाद से।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही इसी कड़ी में हम मदर टेरेसा जैसे माताओं को हम कैसे भूलें। यद्यपि वह पारंपरिक अर्थ में माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करके कई अनाथ बच्चों, बीमारों और गरीबों के लिए माँ की पूरी भूमिका निभाई और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा की। ऐसे ही जीजाबाई, जो छत्रपति शिवाजी की माता जी थी, उन्होंने भी शिवाजी महाराज को बचपन से ही वीरता, धर्म और मातृभूमि के प्रति प्रेम सिखाया
1: जी हाँ
0: और उनमें वो बीज पनपाए जो उनको एक सच्चा राष्ट्रभक्त या देशभक्त बनाने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे ही अगर हम स्वामी विवेकानंद जी की माता सरस्वती की बात करते हैं, सरस्वती देवी की बात करते हैं, तो उन्होंने भी विवेकानंद जी को निर्भीकता, उच्च विचारों और तेज बुद्धि के साथ पाला, जिससे वे एक महान दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु बने और पूरी दुनिया को, सिर्फ हमारे भारतवर्ष को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को, एक नई दिशा दिखाई।
1: जी हाँ, मतलब यही है। इसके लिए मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हर कदम पर तेरा साया साथ हो, हर कदम पर तेरा साया साथ हो, तेरी दुआओं से रोशन मेरा हर रास्ता हो। माँ तेरी ममता की छाया में जीना है, बस तेरा साथ उम्र भर का साया हो।
0: क्या बात है, बहुत ही प्यारी पंक्तियाँ कही। और हम अब घड़ी की ओर देख रहे हैं और हमें लगता है कि हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे श्रोताओं को एक और गीत सुनने का मन कर रहा है। तो चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में।

0: तो हमने संदेश सुना और इतना प्यारा गीत सुना, कितना प्यारा तुझे बनाया। बिल्कुल, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इतनी प्यारी हैं, मगर अपना ध्यान तो वो रख ही नहीं पाती हैं। अपने घर में सबका ध्यान रखती हैं। हम माताओं की बात कर रहे थे, अपनी माँ की बात कर रहे थे कि माँ सबका ध्यान रखती है, घर के सिर्फ अपने बच्चे का नहीं, घर के जो प्रत्येक मेंबर होते हैं, प्रत्येक सदस्य का वो ध्यान रखती, मगर अपना ध्यान नहीं रखती। तो ऐसा भी नहीं करना है, अपना भी ध्यान रखना है, और इसके लिए हमें व्यायाम की मदद जरूर लेनी पड़ेगी। और अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो व्यायाम करने के तरीके बदल गए हैं। अर्चना, अगर मैं बात कहूँ कि कुछ एक वर्षों पहले तक जो महिलाएं थीं वो घर के ऐसे काम करती थी, कई ऐसे काम होते थे, जैसे सिलबट्टे पर मसाला पीसना या चक्की चलाना, चक्की चलाते हुए दाल चावल या अन्य सामग्री पीसती थी, या कपड़े धोती थी, हाथ से कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, और ऐसे में जाने अनजाने कितने ही व्यायाम अपने आप ही हो जाते थे, क्योंकि हाँ, खड़े रहते, झुकते। मगर आज ऐसा है कि ज़्यादातर काम मशीनें कर रही हैं, या हम ज़्यादा से हम खड़े खड़े ही सब कुछ कर लेते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो पा रही है। करने के लिए सारे काम कर रही है महिलाएं, लेकिन जो खुद के लिए करना है वही नहीं कर पा रही हैं। और वो तभी संभव है जब हम खुद पे टाइम देंगे और हमारा एक समय सारणी बनाएंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, आप कितना भी समय दें घर के काम के लिए, बाहर के काम के लिए, आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रही हैं। आपने सबका ध्यान रख लिया मगर अपना ध्यान नहीं रखा। तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आधुनिक व्यायाम जिसके कुछ जो तरीके हैं या जो अलग अलग प्रकार हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे कार्यात्मक प्रशिक्षण जिसे फंक्शनल ट्रेनिंग कहा जाता है। यह कसरत आपके दैनिक जीवन की गतिविधियां जैसे सामान उठाना, सीढ़ियां चढ़ना, इसको आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जैसे स्क्वैट्स, पुशअप्स और डेडलिफ्ट्स, प्लैंक्स, इस तरह के व्यायाम आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे। देखिए, शुरू में तो अपने को दिक्कत आती है, शुरू में हमें लगता है कि मैं ये कैसे करूँगी, यह तो बड़ा ही मुश्किल है, और हम कतराते भी हैं, हम कई बार अपना नाम भी लिखवा आते हैं और पैसे भी जमा कर देते हैं, एक महीने की या तीन महीने की जिम में चले जाते हैं, मगर हम उसको नियमित रूप से कर नहीं पाते। मगर हमारी महिलाएं, बहनें अगर एक बार किसी बात को ठान लेना तो वो कर तो सकती हैं।
1: जी बिल्कुल, बस वही तो कमी है ना रिमी, कहीं कहीं हम लोग, पता हमें सब है लेकिन कहते हैं ना बस करना नहीं होता है, और वो करने के लिए हमें कुछ करना जरूरी है।
0: बिल्कुल, इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स भी देना चाहूँगी कि ऐसे में आप अपना छोटा ग्रुप बना लें, कम से कम 3-4 दोस्त या महिलाएं साथ में अगर कहीं नाम लिखवाती हैं, या घर पर ही एक दूसरे को आप सिखा कर भी कर सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी इतने, या इंटरनेट पर भी इतने वीडियो भी अपलोड होते रहते हैं जिसकी मदद से भी आप कई व्यायाम कर सकते हैं। जैसे जुम्बा भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, कई लोग जुम्बा करके भी अपने आप को फिट रखते हैं। और जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो होती है, इससे भी काफ़ी मदद मिलती है। इसमें थोड़े समय के लिए बहुत तीव्र कसरत करनी पड़ती है और उसके बाद छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। रस्सी कूदना, बर्पीज, तेज दौड़ना और इस तरह के अन्य भी ऐसे छोटे छोटे व्यायाम हैं जो आपको फिट रखने में काफ़ी मदद करते हैं।
1: जी हाँ, तो रिमी आपने इतनी सारी हमारी महिलाओं को जो बातें बताई हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, व्यायाम से रिलेटेड, तो उनमें से सारी नहीं लेकिन मेरे जैसी कुछ तो करेगी ही करेगी। और इस बार तो जैसे आपने कहा ना, अपनी अदर फ्रेंड को भी ले लो, तो ये तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा कि जो नहीं कर पा रही वो एक दूसरे को देख कर जरूर करेंगी। कहते हैं ना, कॉम्पिटिशन होगा तो अच्छे से होगा काम।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कीजिए और हम एक नई सोच की तरफ अगर आगे बढ़ें तो सच में मज़ा आ जाएगा जीने का। क्योंकि जैसे देखा गया, अक्सर 40-45 की उम्र के बाद फिर महिलाओं की जो शारीरिक क्षमता है वह कमज़ोर पड़ जाती है। धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने पर फिर अपने आप को आप उतना स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसा होने या करने से बचें, समय रहते ही आप तुरंत प्रभाव से आप आज ही एक प्रण लीजिए कि आप अपना ध्यान रखेंगी उतनी ही ईमानदारी से जितनी ईमानदारी से आप अपने परिवार का ध्यान रखती हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम खूबसूरत तो रहेंगे ही, और उस खूबसूरत रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
0: तो सुनते हैं यह खूबसूरत सा गीत।

0: तो रीमी, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इतनी खूबसूरत हैं, जैसे वह दिखने में खूबसूरत हैं, वैसे मन से भी काफी खूबसूरत हैं।
1: जी बिल्कुल। और तभी तो उन्होंने मतलब अपने परिवार को भी समेट के रखा हुआ है अपने प्यार और दुलार से।
0: बिल्कुल, क्या बात कही है। हमारी महिलाएं, हमारी माताएं कुछ ऐसी हैं कि भले वह खुद बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी, मगर अपने घर में बच्चों को पूरा मौका देंगी। माँ खुद पढ़ी नहीं, पर मुझको पढ़ना सिखाया। हाथों में झाड़ू नहीं, माँ ने पेन थमाया।
1: जी हाँ, पैसा कमाना सिखाया, संघर्ष की धूप में चलकर आत्मसम्मान जगाया।
0: माँ ने बोलना सिखाया, सच के साथ खड़े रहना, हर रिश्ते को निभाना सिखाया।
1: जी हाँ, क्योंकि माँ है तो सबका, कहते हैं ना, माँ है तो मायका है, और माँ से ही घर का कोना कोना होता है, और माँ जैसा इस दुनिया में सचमुच कोई नहीं होता है। रिमी, ये बात बिल्कुल सही है। कहते हैं ना कि अगर

0: माँ हैं तभी हम जाते हैं, स्पेशली हम जो वर्किंग वूमेन्स हैं ना, अब जैसे अब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे कितना टाइम मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा, और अब जैसे छुट्टियाँ आने वाली है और मैं खुद मेरी माँ के पास जाऊँगी तब मुझे सुकून मिलेगा।
1: बिल्कुल, माँ की छत्र छाया में तो बात ही क्या है, वैसा सुकून तो कहीं और नहीं मिलता। तो माँ पूरे घर को, पूरे परिवार को जोड़कर रखती है, हर रिश्ते को बहुत भली भांति निभाती है। घर में अगर छोटी मोटी नोक झोंक भी हो जाए तो उसको भी वह इतने अच्छे तरीके से पूरा सेटलमेंट करवाती है, उस बात को इस तरह से वो मतलब नज़रअंदाज करते हुए इतने अच्छे तरीके से सुलझा देती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि एक छोटी सी बात, कोई छोटी चिंगारी कोई आग बन सकती थी, मगर वो मिनटों में ही, कुछ मिनटों में पानी से उस आग को बुझा देती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि वो माँ है ना रिमी, और कहते हैं बच्चों के साथ साथ वो पूरे परिवार, जैसे कि आपने बताया हमारे घर में मतलब हस्बैंड होते हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं, जो कलीग्स हैं हमारे साथ में, जो साथ में रहने वाले हैं, चाचा चाची, उन सबका ध्यान रखती है माँ।
1: बिल्कुल, और माँ के आशीर्वाद से ही हम हर मुश्किल से आगे निकल जाते हैं। मुश्किल हमारा मतलब हमारा पीछा करती रहती है, मगर हम उस मुश्किल से बहुत दूर चले जाते हैं और सफलता की जो होड़ है, सफलता के परचम लहराते हैं। अब हम माता की बात करें, माँ की बात करें, तो सचमुच में जैसे पहले भी बोला था कि हमारे कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा, काफ़ी कम पड़ेगा, मगर फिर भी क्या करें, हमसे रहा नहीं जाता तो हम माँ के बारे में तो कुछ तो कहेंगे ही। और माँ मतलब देखा जाता है, सुबह से हमारा नाश्ता बनाती है, पूरे घर का लंच खाना बनाना, या अगर घर पे कोई कुक भी आ रहा है तो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, सबके जो खास दिवस होते हैं, किसी का बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, उन दिनों को याद रखना, बच्चा परीक्षा देने जा रहा है तो क्या पढ़ना है क्या ले जाना है, और परीक्षा से आने के बाद भी बच्चा क्या करेगा, उसको कौन से ट्यूशन में भेजना है नहीं भेजना है, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कौन से डॉक्टर से उनको उनकी बात करवानी है या सलाह लेनी है, उनकी दवाइयों का ध्यान, और ना जाने क्या क्या।
0: जी हाँ, और कहते हैं ना जो सही का पाठ सिखाता है वो होती है माँ। और जैसे रिमी आपने इतनी सारी बातें बताई, जहाँ पूरा दिन शुरू होता है माँ से ही, और आपको पता है ख़त्म भी माँ से ही होता है, जब तक हम लोरी गा के खुद नहीं सोते या सुलाते बच्चों को तब तक वो सोते भी नहीं है।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तुमने लोरी की जब बात कह दी तो फिर तो मुझे लगता है कि हमको एक गीत सुन ही लेना चाहिए, तो
0: जी
1: हम
0: हाँ
1: बिल्कुल एक गीत सुनते हैं।

क्या बात है, इतना प्यारा गीत सुना हमने। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आया होगा। और चलते चलते हम अपने श्रोताओं से अब बात करते हैं। जैसे हम अपनी माताओं की बात कर रहे थे, घर की महिलाओं की बात कर रहे थे कि वह घर के रिश्ते को, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, सबको सहेज के रखती है। और सिर्फ अगर हम रिश्तों की सुंदरता की बात करें तो घर पूरा नहीं होता। घर

0: की सजावट आंतरिक तो होती है और बाहरी भी होती है, यानी घर को हमको सजा कर रखना चाहिए। उससे एक पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता घर पे आती है। तो अपने घर की दीवारों का रंग बहुत सोच समझ के चुनिए। रंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आप घर आते हैं तो आपको सुकून मिलना चाहिए, ठंडक मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आप सोफ़ा में जो कुशन कवर लगाते हैं उनका भी चुनाव आप सोच समझ कर करें। और आजकल इतने आइडियाज़ अखबार में, सोशल मीडिया में, इतने आपको इंटरनेट पे भी इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आप अपने मनपसंद तरीके से, और फिर आप खुद भी इतने सृजनात्मक हैं, इतने क्रिएटिव हैं हमारी बहनें कि अपने भी कई आइडियाज़ लगा सकती हैं। मगर इस समय अर्चना घड़ी क्या कहती है?
1: बिल्कुल, हमारी सखियों से विदा लेने का समय हो चुका है रिमी,
0: और इसी वादे के साथ कि आगे भी ढेर सारी बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

हमारी बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

बागवान फिल्म का गाना अभी आपने सुना अमिताभ बच्चन, ऋचा शर्मा और शंकर महादेवन की आवाज़ में। श्रोताओं लीजिए, अब सुनिए अलीशा चिनॉय, शंकर महादेवन और जावेद अली की मिली जुली आवाज़ें। फिल्म का नाम है बंटी और बबली।

अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में अभी आपने धुरंधर फिल्म का गाना सुना, और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।

श्रोताओं, अब विकास चर्चा में हम आपको जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज की सुविधा देना है, ताकि पैसों की कमी के कारण कोई इलाज से वंचित न रहे। यह योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल लगभग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलता है। इसमें भर्ती, ऑपरेशन, दवाइयां, जांच और इलाज का खर्च शामिल होता है। आयुष्मान कार्ड बनाने के बाद मरीज देश के कई अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकता है, यानी अस्पताल में सीधे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। योजना की मुख्य बातों की बात की जाए तो ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर तबके और जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त इलाज है। हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता, सरकारी और चयनित निजी अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों और ऑपरेशन का इलाज शामिल, कैशलेस और पेपरलेस सुविधा। आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं, इसकी जानकारी अब हम आपको देते हैं निजी नजदीकी जन स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ रखें। पात्रता जांच के बाद आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। यह योजना लोगों को आर्थिक बोझ से बचाने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के बारे में।

यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 2:15 होने को है। आकाश वाले दिल्ली से सुनिए दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से

0: कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम,

पुडुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिविन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से

0: के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। हमारे किसान भाई अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम रामा भाई, राम राम।
1: राम राम अनिता भाई सा, राम राम।
0: और कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला सब किसान भाई बहना ने भी अपनो
1: राम राम, राम, राम सा।
0: हाँ देखो भाई, कार्यक्रम रो टेम भी हो ना अपना ही सोन जीन मोन जीन हरकू बहन चाहे उनालो कतरो भी वेन चाहे हियारो वेन कड़ी भी प्रकार रो मौसम वे तो देखो अपने कार्यक्रम में आईने उपस्थित रही जावे। और आपा भी अटे देखो नवी नवीन रोज भात भात रेणा ने जानकारी करावा चाहे खेती बाड़ी रिवो चाहे मौसम रिवो कड़ी भी प्रकार की कोई भी जानकारी वे तो आप सब जना अटे हली मली ने करा। हाँ सा
1: बिल्कुल सा। देखो किसान भाई, आज कार्यक्रम में अभी बात करूंगा कि जो खेती लागत है वह आप कम किस तरह कर सका। आप जाना कि देखो खेती में लाभ रसोदा होना तो सब जरूरी कदम है कि लाग में कटौती। आप देखा कि लागत में कटौती बात है, आज के समय में रासायनिक खाद कीटनाशक और महंगा बीज के कारण देखा कि खेती रो खर्चो बढ़ रो है। जबकि अंडे अनुपात में आप देखा कि फसलों दाम नहीं पहल पह रहे हैं। यदि किसान भाई समझदारियों काम लेगा और वैज्ञानिक तरीका का उपयोग करेगा तो खेती लागत लगभग 30% से 40% कम कर सकेगा सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा है रामा भाई। और देखो खेती में लागत कम करने तरीका हूँ कर सका। हाँ अंडे बातें देखो जरूरी है कि मिट्टी रो परीक्षण करावनो अंधाधुंध खाद रो अगर आपने किसान भाई प्रयोग करे और लागत बढ़ावा सब बड़ो कारण यू है। बुआयू पहला अपने मिट्टी की जाँच सरकारी लेबरे महीने जरूर करावनी चाहे अणु वना ने पतो चल जाए कि खेतरे महीने कणा कणा पोषक तत्वारी कमी है और कंडी अधिकता है। जाणियों कहिए कि वना ने 32 खाद नाखनी पड़ेगा जतरी वणी खेत महीने वणी फसल रे वाते जरूरी है। जाणियों यूरिया और डीएपी पे वेवा वाला जी भी अनावश्यक खर्च है वी भी बच जाएगा सा।
1: बिल्कुल किसान भाई। और देखो लागत करवा कम करवा तो दूसरा तरीको है कि स्वयरा जो बीज है और जे भी बीज आप ले रहा वो बीजोपचार वो जरूरी है। बाजार में आप देखा कि हर साल महंगा बीज आवे, हाइब्रिड बीज अभी खरीदा और कहते हैं क्या किसान उन्नत किस्म का बीज खुद तैयार कर सके और अपनी फसल उस सबसे अच्छा हिस्सा में बीज ने सुरक्षित रख सके।
0: बिल्कुल सही कह रहा है। और अंडे बात है देखो बुआई पहला जटे आप बीज की बात कर रहे हैं कि खुदरा बीज और बीज ने उपचार करनो है तो बुआई पहला जी भी बीज है वनारो बीज उपचार जरूर कर देनो है। और फसल रे महीने देखो शुरुआती जी भी बीमारियां है वी नहीं लगेगा और बाद में महंगा जी भी कीटनाशक का छिड़काव की जरूरत पड़े वह भी कम वे जाएगा सा। और अंडे लाल लारे देखो प्राकृतिक और जैविक खाद रो उपयोग भी किसान भाई ने करनो है। बाजारू रासायनिक खादारी जगह पे देखो घरे वणी तक जी भी वर्मी कंपोस्ट है कि जिन्हें आप केचुआ खाद भी के महा और गोबर की खाद है अणा ने भी काम में लेनो है सा।
1: तो देखो कार्यक्रम में तो वाचिता की और भी करांगा और होना राजस्थानी लोकगीत।
0: हाँ सा।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो किसान भाई देखो, राजस्थान लोगी थोड़ी और देखो कार्यक्रम में अभी बात कर रहे हैं कि किस तरह आप जो किसान जो है वो खेती की लागत आप कम कर सके।
2: हाँ, तो लागत में इन्हें कम करवा रही, अगर जेटे आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखो भाई, आप बात कर रहे हैं, हाँ, प्राकृतिक और जैविक खाद रो भी अगर उपयोग करेगा किसान भाई, तो देखो बाजारू रासायनिक खादारी जगह पे घरे वणी थे कि वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद, गोबर की खाद या पाचे हरी खाद या जिन्हें आप ढेंचा सनई भी केवा अनारो उपयोग करना चाहे, इन्हीं केवल मिट्टी की उर्वरता ने बनाए रखे, बल्कि देखो लंबा टाइम तक जो है मिट्टी ने उपजाऊ बनाई ने खाद री निर्भरता ने भी कम करे है। और जीवा अमृत और धन जीवा अमृत जिस विकल्प है, इस शून्य बजट खेती की दिशा में भी अपने किसान बहर वाते हऊ ऐसा।
1: बिल्कुल साहब, आपने देखा कि जो एकीकृत कीट प्रबंधन है, हमने देखा कि फसल में कीड़ों लग जाए तो तुरंत महंगी दवाएं नहीं छिड़के हैं, अन्य जगह आपने देखा कि एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाना चाहे, प्रकाश प्रपंच यानी रात में कीड़ा ने आकर्षित करवा वाते जो है फेरोमोन ट्रैप है, कीड़ा संख्या नियंत्रित करवाते नीम रो तेल है, जो सस्ते और प्रभावशाली जैविक कीटनाशक है सा।
2: बिल्कुल। और अन्य लाला देखो मित्र कीट की बात करा तो देखो अपने खेत में ही मित्र कीट है जिस तरह लेडी बग है, अणा ने पनपवा देना चाहे, जिस शत्रु कीट है ई वणा ने खाई जावे है। जल प्रबंधन और आधुनिक पाणंदरी अगर बात करा तो देखो परंपरागत तरीकों खेत भरवारी बजाय ड्रीप है, टपक है, टपक सिंचाई है, फवारा सिंचाई है, अणारो किसान भाई ने प्रयोग करना चाहे सा।
1: बिल्कुल अणु न केवल 50% पानी की बचत होगा बल्कि मजदूरी बिजली समय और श्रम भी जो है वह भी बचत होगा, खरपतवार भी कम उगेगा क्योंकि पानी रे बचत वहाँ पे देखा कि पौधा पाना जो जड़ा तक पहुँच जाएगा। और कतरी बार आप देखा कि जो कृषि मशीनीकरण है और साझा संसाधन है अंडो आप उपयोग भी ले सका।
2: बिल्कुल। और कृषि मशीनीकरण और साझा संसाधन की अगर बात करो तो देखो छोटा जी किसान भाई है बना रहे बात है हर मशीन खरीदना जो है संभव नहीं वे है, क्योंकि अंडे वास्ते जी भी सरकारी समितियाँ है भी मशीना किराए पे देवे और ज़्यादा किफायती भी नहीं वे तो अनारो उपयोग करने जुताई रे टेम पे और बुआई रे टेम पे अनारो खर्चो जो है भी कम कर सके है अना ने लाई।
1: बिल्कुल किसान भाई, देखो ये बात की थी कि किसान अपनी कसर की जो लागत है वह कम कर सके, और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और होना ही राजस्थानी लोक गीत।
2: हाँ साहब।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो देखो भाई, रामा भाई सुंदर सो मनभावन गीत हुनियो, लाड़लारे जानकारियों भरिया तक का संदेशा भी हुनिया। और अबे देखो, कार्यक्रम में आपने किसान बहने जानकारी करावा कि अगर भी आपने पशु और अगर बीमा करी देवे तो देखो मनारे बीमा कई कई लाभ देगा सा। और जटे देखो आप बीमारी बात कर रहे हाँ, तो पशु बीमारा नरही सारा लाभ है। पशुधन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था री रीढ़ है। किसान भाई और जी भी पशुपालक है, वनारे पशु केवल एक संपत्ति नहीं है बल्कि वनारी आजीविका रो मुख्य स्रोत।

0: है, बीमारी वो, दुर्घटना वो या प्राकृतिक आपदा के कारण अगर पशुओं की मृत्यु हो जाए तो देखो पशुपालक ने भारी आर्थिक नुकसान उठानो पड़े। और जोखिम ने कम करवाने वास्ते पशु बीमो जो है एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करे सा।
1: बिल्कुल सर, और देखो पशु बीमा जिस तरह मनुष्य बीमा हुए वैसे वो पशु बीमा भी हुए, और किसान देखो आर्थिक सुरक्षा है, जोखिम प्रबंधन है, और मैं आप देखा कि पशु बीमा जरूरी है, एक प्राथमिक लाभ और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें। जनरल आप भी देखा कि एक दुधारू गाय है तो वहाँ आप भी देखा कि पालवाओं पोसों लेन तक आगे आप भी देखा कि कड़ी भी स्थिति में देखो कि कभी दुर्घटना भी जाए या बीमार भी जाए तो वहीं स्थिति में अभी आप भी देखा कि जो बीमा कंपनी है वह पशुपालक ने वहीं क्षतिपूर्ति पूरी करवाते बीमो करावे। और देखो क्या बीमा कंपनी आप देखा कि पालक ने अपनी संचित पूंजी खोवार ऑर्डर नहीं रहे और आर्थिक संकट भी बच जावे है सा।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अमा भाई और लाड लारे अगर आकस्मिक मृत्यु और बीमारियां हूँ सुरक्षा की बात करा तो पशु महीने देखो महामारी है जिस तरह लंपी स्किन डिजीज है या पचे खुर पका रोगे मुँह पका रोगे और अचानक वेवा वाली जी भी दुर्घटना है वणा ने हमेशा वणी तकी रहे। पशु बीमा बहुत सारी जी स्थितियाँ हैं वणा में वणा ने लाभ भी मले है। ये बीमारियाँ महीने देखो नरी सारा बीमारियाँ रा प्रकार वे वणा महीने संक्रमण के कारण या पचे सर्पदंश जैसी जी घटना है या पचे कणी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा भी जावे, बाढ़ आई जावे, भूकंप वेवे, आकाशीय अगर बिजली भी पड़ जावे, तूफान आई जावे, ऐसी दुर्घटना भी वही जावे, वाहन री चपेट में भी कोई अगर पशु आई जावे, आग लाग जावे री जी भी वात वेवे वणी में भी आई जावे तो भी हणा किसान भाई ने जो है फायदो मले सा। स्वरोजगार और उद्यम ने भी अणी महीने प्रोत्साहन दीदो जावे सा।
1: बिल्कुल सा, और देखो स्वरोजगार जो बात करें तो पशुपालन में आप देखा कि व्यवसाय रूप में अपना है, और युवा देखा कि बीमो महत्वपूर्ण है। जनरल हमें पता लगे कि बीमो नहीं करे रखे हो तो देखो आपने पड़े जो भी बीमा वाला है तो वहाँ जिन पशुपालन और बीमो कर सका। और अब देखो गर्मी भी पड़ रही है तो गर्मी के मौसम में भी जो आपने पशु है तो वहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना है। समय समय पर देखो दाना चारा की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था भी करनी है, और वही सके तो जटे वे रह रहा है तो वटारो जो स्थान है वो भी साफ स्वच्छ और सुरक्षित रखना पड़ेगा सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा। और पशु बीमारी की बात कर रहे हैं हाँ तो देखो अणी महीने अंडे लाल लारे अणी वना रे बैंक रो जोखिम भी कम भी जावे है, सरकारी योजना और सब्सिडी रो लाभ भी वना ने मिले है। भारत सरकार और नरी सारी राज्य सरकार है जिस तरह राष्ट्रीय पशुधन मिशन है पशु बीमा पे देखो भारी सब्सिडी प्रदान करे है। गरीबी रेखाओं जी भी नीचे है वना ने जो देखो पशुपालक ने प्रीमियम राशि 70-80% तकरो जत्रो हिस्सो है वो सरकार वहन करे। सामान्य वर्ग जत्रा भी मना के वणारी दर राज्य है वी भी काफ़ी कम राखी जावे जने वो एक छोटा किसान भाई जी भी है उन्होंने आसानी पशु बीमो भी कर सके है और वंडी जा भी किस्त आवे वह भी आसानी भर सके है।
1: बिल्कुल किसान भाई, देखो सरकार द्वारा पशु संबंधित कई प्रकार की योजना भी चल रही है तो देखो किसान भाई देखो अपडेट होना पड़ेगा। जो आपने पास अगर सही मोबाइल नहीं है तो मोबाइल लेने जो भी योजना वंडी जानकारी भी लेनी पड़ेगा। अगर जानकारी लेगा तो निश्चित रूप देखो वो अपने पशुपालन बढ़िया रख सके और जनरल पशुपालन बढ़िया रहेगा तो देखो वंडो भी मन खुश रहेगा, वो भी हर काम अच्छी तरीके से कर पाएगा। और देखो कार्यक्रम में मनोरंजन भी बहनों जरूरी है तो क्यों नहीं एक राजस्थानी लोकगीत और हुनासा।
0: हाँ सर।

0: तो देखो किसान भाई, देखो कह रहे सर राजस्थान लोकगीत होने, और देखो कार्यक्रम में और भी बात करता, लेकिन गड़ी गड़ी नाला, तो देखो कार्यक्रम में विदा ला, चाला सा राम
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।

0: हमारे किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। राज्य सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद के अनुसार यह कार्यक्रम लखनऊ के जनभवन में 3:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम

0: दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत शामिल थीं। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस वक्त दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के प्रसारण लेकर शाम 5 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम अब हमारे FM लेक सिटी चैनल के श्रोता भी एक साथ सुन सकेंगे।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित और मेरे साथ है मनस्वी।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम होने वाला है

0: जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर। शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन किचन में यूज होने वाले न्यू गैजेट्स की दिलचस्प जानकारी के साथ। फिर सेहतनामा में जानेंगे इकोफोबिया और एलोरोफोबिया के बारे में। उसके बाद फिल्मी दुनिया में बात होगी पंकज मलिक और फ्रेड एस्टायर की। साथ ही जानेंगे इग्नेस टर्की, सूमा शरूर, एवाना स्पानोविक और शरत गायकवाड और मिसी फ्रैंकलिन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें।
1: और हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अंत में आज का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी जानकारी भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सफर के लिए और शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम इस शानदार गीत के साथ।

0: दोस्तों सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपका खाना कोई इंसान नहीं बल्कि एक स्मार्ट मशीन बना रही है। सब्जी अपने आप कट रही है, खाना परफेक्ट टेम्परेचर पर कुक हो रहा है और पूरा किचन जो है वो मोबाइल और एआई से कंट्रोल हो रहा है।
1: दोस्तों सुनने में मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन ये फ्यूचर नहीं, ये है आज की रियलिटी। और इसी टेक्नोलॉजी का नाम है प्रोडक्शन किचन, यानी ऐसा स्मार्ट किचन जहाँ बड़ी मात्रा में खाना बहुत ही फास्ट, क्लीन और परफेक्टली ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया जाता है।
0: बिल्कुल, और ये टेक्नोलॉजी बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स और फैक्ट्रीज़ में काफ़ी तेज़ी से यूज़ हो रही है। और अब किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि ये एक हाईटेक वर्कप्लेस बन चुका है।
1: इसमें यूज़ होते हैं ऑटोमेटिक कटिंग मशीन, स्मार्ट कुकिंग सिस्टम, टेम्परेचर सेंसर्स, ऐप कंट्रोल्ड ओवंस और तो और रोबोटिक शेफ्स भी।
0: और सिर्फ इतना ही नहीं, अब स्मार्ट किचन इन्वेंट्री भी मैनेज करता है। कितना सामान बचा है, कितना यूज़ हुआ है, क्या दोबारा से ऑर्डर करना है, ये सब कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेता है।
1: इससे ये फ़ायदा है कि शेफ़ को हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, और इससे बिज़नेस ओनर्स को भी काफ़ी फ़ायदा होता है क्योंकि टाइम बचता है, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है और वर्कर्स पर भी प्रेशर कम होता है।
0: साथ ही खाना भी जल्दी बनता है, टेस्ट भी सेम रहता है, फूड भी वेस्ट कम होता है और हाइजीन भी मेंटेन रहती है।
1: यानी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ ऑफिसेज और फोन्स में नहीं बल्कि हमारे किचन तक भी पहुंच चुकी है।
0: यानी फ्यूचर का किचन सिर्फ खाना नहीं बनाएगा बल्कि डेटा, टेक्नोलॉजी और एआई से पूरा कुकिंग प्रोसेस मैनेज करेगा।
1: और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में स्मार्ट किचन्स फूड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन बन सकते हैं। जहां पहले किचन में सिर्फ मेहनत दिखती थी, अब वहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन भी नज़र आता है। सच में दोस्तों, प्रोडक्शन किचन हमारी डेली लाइफ को कितनी तेज़ी से बदल रहा है।

0: डर हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी-कभी वो एक गूंज या एक मासूम जानवर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। फोबिया कोई मजाक नहीं होता, ये इंसान के मन और भावनाओं पर गहरा असर डाल सकता है। किसी के डर को समझना भी इंसानियत है, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अनकही लड़ाई हो सकती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, इमेजिन कीजिए बाहर हल्की बारिश हो रही है, लेकिन कोई इंसान उस बारिश की आवाज़ से ही घबराने लगे।
0: या फिर एक छोटी सी बिल्ली को देखकर किसी की हार्ट बीट अचानक तेज हो जाए, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे डर को रोज महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल, और जब कोई डर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए और हमारी सोच, बिहेवियर और डेली लाइफ को अट्रैक्ट करने लगे, तो दोस्तों उसे कहा जाता है फोबिया।
0: और आज के सेहतनामा में भी हम बात करेंगे दो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फोबियाज की, एक है इकोफोबिया और दूसरा है एलूरोफोबिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इकोफोबिया की। इसमें इंसान को नेचर और इन्वायरमेंट से जुड़ी चीज़ों से डर लगने लगता है, जैसे तूफान, बाढ़, तेज़ बारिश, क्लाइमेट चेंजेस या फिर प्राकृतिक आपदाएं।
0: कुछ लोग डिजास्टर की न्यूज़ या वीडियोस देखकर भी इतने डर जाते हैं कि उन्हें हर समय एंजाइटी फील होने लगती है। उन्हें लगता है कि कभी भी कोई भी बड़ी डिजास्टर आ सकती है।
1: बिल्कुल, और अब बात करते हैं एल्यूरोफोबिया की, यानी कैट्स के डर की।
0: दोस्तों, इस फोबिया में बिल्ली को देखते ही कुछ लोगों को घबराहट, स्वेटिंग, फास्ट हार्ट बीट और पैनिक जैसा फील होने लगता है।
1: कई बार ये डर किसी पुराने एक्सपीरियंस से जुड़ा होता है, जैसे बचपन में कैट ने स्क्रैच कर दिया हो या अचानक डर हो।
0: और कई कल्चर्स में कैट को लेकर मिथ्स और सुपरस्टिशंस भी हैं जो इस फियर को और बढ़ा सकते हैं।
1: लेकिन ज़रूरी बात यह है कि फोबिया सिर्फ डर नहीं होता, ये मेंटल हेल्थ से जुड़ी कंडीशन भी बन सकता है।
0: अगर कोई डर आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करने लगे तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सपोर्ट, काउंसलिंग और थेरेपी से ऐसे फोबियाज को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, डर सबको लगता है, लेकिन असली ताकत डर को समझने और उससे बाहर आने में होती है।

0: सुरों की तहजीब, अल्फाज की रवानी, पंकज मलिक की आवाज़ है दिलों की कहानी। जब पंकज मलिक माइक संभालते हैं, खामोश लम्हे भी गुनगुनाने लगते हैं। उनकी आवाज़ में ठहराव भी है और एहसास भी, जैसे किसी शाम में छुपी हो बारिश की नमी। रेडियो की फिजाओं में जब उनका नाम उतरता है, हर सुनने वाला खुद को खास महसूस करता है। लफ्ज़ उनके सिर्फ बोले नहीं जाते, रूह तक बड़ी नज़ाकत से पहुँच जाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, फिल्मी दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका नाम सिर्फ उनकी कला नहीं बल्कि उनके योगदान की वजह से हमेशा याद रखा जाता है। और आज यानी 10 मई को जन्मदिन है दो ऐसे ही दिग्गज कलाकारों का जिन्होंने म्यूज़िक और डांस की दुनिया में इतिहास रच दिया था।
0: बिल्कुल मोहित, एक तरफ है भारत के महान संगीतकार, गायक और अभिनेता पंकज मलिक, और दूसरी तरफ है हॉलीवुड के लेजेंडरी डांसर और एक्टर फ्रेड एस्टेयर। दोनों ने अपने अपने अंदाज से पूरी दुनिया को इंस्पायर किया।
1: तो चलिए शुरू करते हैं पंकज मलिक से, जिनका जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत का पायनियर भी माना जाता है, यानी वो कलाकार जिन्होंने शुरुआती दौर में फिल्मी संगीत को नई दिशा दी।
0: हाँ, और ख़ास बात यह है कि जब प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत हो रही थी, तब पंकज मलिक उन कलाकारों में से थे जिन्होंने इस कला को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा में कई यादगार गाने और संगीत दिए।
1: वे बचपन से ही हिंदी संगीत में रुचि रखते थे और उन्होंने इंडियन क्लासिक म्यूज़िक की ट्रेनिंग भी ली। बाद में उनका जुड़ाव गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से हुआ, जिसके बाद वे रविंद्र संगीत के बड़े कलाकार बन गए।
0: दोस्तों, उन्होंने आकाशवाणी में भी लगभग 50 साल तक काम किया था। साथ ही उन्होंने देवदास, मुक्ति, डॉक्टर, जिंदगी जैसी कई फिल्मों में संगीत दिए, और KL सहगल, गीता दत्त और आशा भोंसले जैसे बड़े कलाकारों के साथ भी उन्होंने काम किया।
1: बिल्कुल, और उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और बाद में भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया। और अब बात करते हैं हॉलीवुड के लेजेंडरी स्टार फ्रेड एस्टेयर की, जिनका जन्म 10 मई 1899 को अमेरिका में हुआ था।
0: फ्रेड एस्टेयर सिर्फ डांसर ही नहीं थे बल्कि एक्टर, सिंगर, कोरियोग्राफर और प्रेजेंटर भी थे। उन्होंने दुनिया के ग्रेटेस्ट डांसर में उन्हें गिना जाता है। फ्रेड एस्टेयर की डांस स्टाइल इतनी स्मूथ और ग्रेसफुल थी कि लोग आज भी उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं। साथ ही उन्होंने टैप डांस को पूरी दुनिया में फेमस बनाया।
1: साथ ही उनकी जोड़ी जिंजर रोजर्स के साथ बहुत ही मशहूर हुई। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्म म्यूजिक भी दिए।
0: उन्होंने एकेडमी, हुनरी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब, एमी अवार्ड्स और कई बड़े सम्मानों से अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने उन्हें हॉलीवुड के ग्रेटेस्ट स्टार्स में भी शामिल किया।
1: तो दोस्तों, आज के दिन जन्मे ये दोनों कलाकार हमें सिखाते हैं कि मेहनत, कला और डेडिकेशन इंसान को हमेशा यादगार बनाता है।
0: बिल्कुल मोहित, और संगीत हो या डांस, असली कला वही होती है जो सालों बाद भी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहे।

0: शिरूर और एग्नेस्टर की। सूमा शिरूर ने साबित किया कि सफलता सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास से हासिल होती है। निशाना सिर्फ बंदूक का नहीं था, उनका असली निशाना था अपने सपनों को सच करना। उन्होंने हर युवा को ये संदेश दिया कि अगर मेहनत, ईमानदारी हो तो हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, मंजिल तक पहुंचना तय है।
1: बिल्कुल दोस्तों, अब बात होगी उन खास खिलाड़ियों की जिनका भी आज जन्मदिन है, यानी 10 मई को।
0: बिल्कुल, एक है भारतीय हॉकी खिलाड़ी इग्नेस्टर की और दूसरी है भारतीय निशानेबाज सूमा शिरूर और तीसरी है सर्बिया की स्टार लॉन्ग जंपर इवाना स्पानोविक।
1: बिल्कुल, और इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से खेल जगत में अलग पहचान बनाई है और लाखों लोगों को इंस्पायर भी किया है।
0: सबसे पहले बात करते हैं इग्नेस टर्की की, जो भारतीय हॉकी टीम की बेहतरीन डिफेंडर और फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं। उन्होंने 2001 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था और 2004 व 2012 में ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था।
1: बिल्कुल, और 2003 के एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनका किया गया शानदार गोल आज भी

0: मोमेंट में गिना जाता है और उसी जीत के साथ भारत ने एशिया कप का गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया।
1: और खास बात यह भी है कि इग्निस टर्की भारतीय सेना में मेजर रैंक के ऑफिसर भी हैं। उन्होंने 2001 में अवार्ड अर्जुना अवार्ड मिला था और 2010 में पद्मश्री और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे कई बड़े सम्मान से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है।
0: और अब बात करते हैं शुमा शिरूर की, जिन्होंने इंडियन शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे 10 मीटर एयर राइफल इवेंट की ज्वाइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी रह चुकी है।
1: 2004 में सुमा शिरूर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में परफेक्ट 400 पॉइंट्स स्कोर किए थे और उस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में और कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी मेडल जीते हैं।
0: इसके अलावा उन्हें 2003 में अर्जुन अवार्ड और 2022 में द्रोणाचार्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
1: आज वे इंडियन जूनियर राइफल शूटिंग टीम की हाई परफॉर्मेंस कोच हैं और पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखारा जैसे खिलाड़ियों को भी ट्रेन कर चुकी हैं।

0: पेनोविक, जिन्हें दुनिया की ग्रेटेस्ट फीमेल लॉन्ग जंपर्स में गिना जाता है।
1: इवाना वर्ल्ड चैंपियन, यूरोपियन चैंपियन और 5 बार डायमंड लीग ट्रॉफी विनर रह चुकी हैं। उनका इंडोर लॉन्ग जंप रिकॉर्ड 7.24 मीटर आज भी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस में शामिल है।
0: उन्होंने सर्बिया के लिए कई मेडल जीते और अपने देश की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी।
1: तो दोस्तों, इन सभी महान खिलाड़ियों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आगे भी दुनिया भर के खिलाड़ियों को इंस्पायर करते रहेंगे।

0: जब इरादे ऊंचे हों तो इंसान सिर्फ ज़मीन पर नहीं चलता, वो अपने सपनों से भी लंबी छलांग लगाता है। और ऐसी ही प्रेरणा है इवाना स्पानोविक। इवाना ने दुनिया को सिखाया कि कामयाबी ताकत से नहीं, लगातार मेहनत और खुद पर भरोसे से मिलती है। हर छलांग के पीछे सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि संघर्ष, अनुशासन और जीत का जुनून छुपा होता है। ज़िंदगी में कई बार हम गिरते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही होते हैं जो हर बार पहले से भी ज़्यादा हिम्मत के साथ उठते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, इवाना

0: பெண்கள்.
1: दोस्तों अब बात करेंगे भारत के पैरालंपिक स्टार शरद गायकवाड़ और अमेरिका के मशहूर ओलंपिक चैंपियन मिसी फ्रैंकलिन की। दोनों ही शानदार स्विमर हैं और आज के दिन इनका जन्मदिन है।
2: बिल्कुल मोहित, और जिंदगी में अक्सर लोग हालात देखकर रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हालात बदलने का हौसला रखते हैं, और ऐसा ही एक नाम है शरद गायकवाड़। शरद गायकवाड़ हमें सिखाते हैं कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से पूरा किया जाता है। जब दुनिया आपको कमज़ोर समझे, तब अपनी मेहनत को अपनी सबसे बड़ी आवाज़ बना दो। हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल दौर आता है, लेकिन हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और इन दोनों ही महान स्विमर्स का आज जन्मदिन है, और दोनों ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन और अपने अचीवमेंट से पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है।
1: बिल्कुल मनस्वी, और सबसे पहले बात करते हैं भारत के पैरा स्विमर शरद एम गायकवाड़ की, जिनका जन्म 10 मई 1991 को बेंगलुरु में हुआ था।
2: जन्म से ही उनके बाएं हाथ में डिफॉर्मिटी थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उन्होंने स्विमिंग की शुरुआत की और आगे चलकर भारत के पहले स्विमर बने जिन्होंने पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
1: बिल्कुल, शरद ने 2014 एशियन पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 मेडल जीते। इसके साथ ही उन्होंने पीटी उषा का मल्टी स्पोर्ट इवेंट में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।
2: उनके नाम 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल और 40 से ज़्यादा नेशनल मेडल्स हैं। उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज वे यंग स्विमर्स को ट्रेनिंग देकर इंस्पायर भी कर रहे हैं।
1: अब बात करते हैं अमेरिका की लेजेंडरी स्विमर मिसी फ्रैंकलिन की। उनका पूरा नाम मेलिसा फ्रैंकलिन जॉनसन है और उनका जन्म 10 मई 1965 को कैलिफोर्निया में हुआ था।
2: मिसी फ्रैंकलिन दुनिया की सबसे सफल स्विमर्स में गिनी जाती है। उन्होंने ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स और कई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में कुल 28 मेडल जीते, जिनमें 17 गोल्ड मेडल्स शामिल हैं।
1: 2012 के लंदन ओलंपिक्स में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने 5 मेडल जीते, जिनमें 4 गोल्ड मेडल थे। उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर बैक स्ट्रोक दोनों ही इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
2: मिसी फ्रैंकलिन ने 200 मीटर बैक स्ट्रोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। उन्हें स्विमिंग वर्ल्ड स्विमर्स ऑफ द ईयर, फीना स्विमर्स ऑफ द ईयर और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जैसे बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2018 में उन्होंने प्रोफेशनल स्विमिंग से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आज भी वे यंग एथलीट्स के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है।
1: तो दोस्तों, शरद गायकवाड़ और मिसी फ्रैंकलिन दोनों ही हमें सिखाते हैं कि मेहनत, कॉन्फिडेंस और डेडिकेशन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसी के साथ इन दोनों शानदार स्विमर्स को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, अब समय है कार्यक्रम के खास हिस्से आज का इतिहास का, यानी 10 मई के दिन इतिहास में क्या क्या खास हुआ, आइए जानते हैं।
1: बिल्कुल मोहित, सबसे पहले बात करते हैं साल 1869 की। तो अमेरिका में पहली बार ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रोड पूरी तरह शुरू हुई थी, जिससे देश के अलग अलग हिस्से रेल मार्ग से जुड़ गए थे।
0: बात करें साल 1857 की, तो आज के दिन भारत की पहली बड़ी क्रांति यानी 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई भी कहा जाता है।
1: बात करें साल 1994 की, तो आज ही के दिन दक्षिण अफ्रीका ने नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। यह दिन दुनिया में समानता और मानव अधिकारों के लिए बहुत खास माना जाता है।
0: बात करें साल 1993 की, तो आज के दिन भारत के महान संत और समाज सुधारक संत ज्ञानेश्वर पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर हुई थी।
1: और आज ही के दिन दुनिया भर में कई जगहों पर वर्ल्ड लुपस डे भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को लुपस नाम की बीमारी के बारे में जागरूक करना है।
0: और दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी 10 मई का दिन काफ़ी खास रहा, क्योंकि इस दिन कई देशों में पहली बार डिजिटल कम्युनिकेशन और इंटरनेट से जुड़े बड़े प्रयोग सफल हुए थे, जिन्होंने आज की मॉडर्न वर्ल्ड की नींव रखी थी।
1: तो दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताता, बल्कि ये हमें सिखाता भी है कि दुनिया कैसे बदली और आगे बढ़ी।
0: तो दोस्तों, ये थे 10 मई के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।

0: तो दोस्तों बात करें आज के स्पोर्ट्स अपडेट की, तो आज के दिन डबल हेडर यानी दो मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स CSK वर्सेस लखनऊ सुपर जॉइंट्स, LSG और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस की भिड़ंत मुख्य आकर्षण है। यह प्लेऑफ की दौड़ के लिए महत्वपूर्ण मैच है। पहला जो मैच है वो CSK वर्सेस LSG, यह मैच MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हो रहा है, जो लखनऊ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही जो दूसरा मैच है RCB वर्सेस MI, यह करो या मरो वाला मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है, जो मुंबई के लिए प्लेऑफ की उम्मीदों के लिए अहम है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस सॉन्ग के साथ आपसे लेंगे विदा। आज मैं था आपका साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ थी
0: मनस्वी।

युवा साथी अभी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, शाम के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों के लिए कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और

0: आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:05 हो चुके हैं और इस शाम को थोड़ा सा भक्ति नुमा बनाते हैं। शुरुआत करते हैं इस भजन से, फिर आपको सुनाएंगे कुछ प्यार भरे मीठे मीठे फिल्मी नगमे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से फिल्म संगीत मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक बार मुस्कुरा दो, गायक कलाकार किशोर कुमार, संगीत ओपी नैयर का, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

दोस्तों, इस गाने के साथ ही आपको भी मातृत्व दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और ये गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म दादी माँ से। गायक कलाकार थे मन्ना डे और महेंद्र कपूर। और बिल्कुल साफ कहा गया है, बिल्कुल दिल से कहा गया है कि माँ की दुआओं में ऐसा असर होता है, टूटा हुआ दिल भी फिर से बसर होता है। जिस घर में माँ की हंसी गूंजती रहती है, वहाँ हर दर्द भी छोटा सा सफ़र होता है। माँ सिर्फ रिश्ता नहीं, भगवान का सबसे सुंदर रूप होती है।

0: जी हाँ दोस्तों, माँ जब तक साथ रहती है उसकी कीमत अक्सर समझ नहीं आती, और जब दूर चली जाती है तब हर छोटी बात रुला जाती है। घर तो वही रहता है मगर माँ के बिना आंगन सूना लगता है। दुनिया की भीड़ में भी इंसान अकेला पड़ जाता है, क्योंकि माँ का प्यार ही वो छांव है जो उम्र भर साथ निभाती है। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त करते हैं। फिल्म संगीत हम आपको और भी सुनाएंगे रात्रि 8 बजे। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:30 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर अजमेर से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन, राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी से एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं अधिक कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सभी से पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी, युवाओं को रोजगार और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में सहभागी होने की अपील की।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आध्यात्मिक केंद्रों के समर्थन से किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

0: लेने और धरती को नुकसानदायक रासायनिक उर्वरकों से बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र प्रति बूंद अधिक फसल पहल को बढ़ावा देने, जल संरक्षण, बिजली की बचत और सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल और मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय समारोह गुजरात के सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजन होगा, साथ ही पुनर्निर्मित मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए ऐसे अवसर सभी में नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: राज्य में भी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। राज्यस्तरीय कार्यक्रम जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समारोह में शामिल होंगे। कला और संस्कृति विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि इस अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे, साथ ही राष्ट्रीय आयोजन का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहे। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति, रामजल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर चर्चा की गई। साथ ही राजस्थान के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी भेंट की। इस दौरान राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा तथा शहरी विकास से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। श्री शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात कर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर बधाई दी। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अलवर में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। श्री यादव ने सभी को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें जन्म देने वाली माता और धरती माता दोनों के प्रति कृतज्ञ रहना आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज अलवर, खैरथल तिजारा और कोटपुतली क्षेत्र के करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। अलवर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि इन विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा।
2: जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराणा का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक और नकल गिरोह का खुलासा हुआ है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में बताया कि भर्ती परीक्षा में संगठित तरीके से पेपर लीक किया गया और फर्जी डिग्री तथा प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी हासिल करने की कोशिश की गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव ने पूछताछ में पेपर लीक की बात कबूल की है। एडीजी ने बताया कि पेपर लीक मामले में शेर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके रिश्तेदार विजय डामोर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसओजी कटारा के आरपीएससी सदस्य बनने की नियुक्ति प्रक्रिया और उसके द्वारा किए गए पेपर लीक से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है।
3: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है।

0: पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इस बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के लिए राजस्थान एसओजी को जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए इस मामले में सभी जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 3 मई को ये परीक्षा पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत आयोजित की गई थी। 7 मई को परीक्षा के बारे में कथित कदाचार गतिविधियों के बारे में एनटीए को सूचना मिली। इसके बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए ये सूचनाएं केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी गईं। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी तालमेल पर भी चर्चा की। गृह मंत्री ने लंबी अवधि के बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति को भी जांचा। इनमें अहम बुनियादी परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान की वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जनजागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने और आवश्यक राहत सामग्री तथा दवाओं के पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने पर भी मंथन किया गया। और अब मौसम। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हीट वेव का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज गर्मी और लू को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यह दिन के साथ ही रात में भी हीट वेव का असर रह सकता है। आज भी इन जिलों में लू का प्रकोप रहा। इन जिलों में दिन का पारा औसतन 44 से 45 डिग्री सेल्सियस मापा जा रहा है। वहीं चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी की चपेट में हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू में धूप की तपिश और उमस लोगों को परेशान कर रही है। सुबह शाम हल्की हवाएं चलने से मामूली राहत मिल रही है। कल से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इससे कई जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। सवाईमाधोपुर जिले में पशुओं में मुंहपका, खुरपका बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालन विभाग की ओर से ये अभियान 15 मई तक चलेगा। विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने बताया कि जिले में अब तक 2.5 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालकों से गौवंश का समय पर टीकाकरण करवाकर इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है।
2: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें, ताकि ये पशुओं को नुकसान ना पहुंचा पाए।
1: उत्तर पश्चिम रेलवे बाड़मेर से हरिद्वार के बीच कल से विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये सेवा सप्ताह में 2 बार संचालित होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये रेलगाड़ी बाड़मेर से हर सोमवार और गुरुवार को उपलब्ध रहेगी। ये विशेष ट्रेन 16 जुलाई तक चलेगी। आईपीएल क्रिकेट के प्लेऑफ में आज 2 मैच हो रहे हैं। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जारी है। चेन्नई में खेले जा रहे इस मैच में लखनऊ की टीम ने सीएसके को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया है। वहीं दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समाज की भागीदारी को राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देश भर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन राज्यस्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर, राज्य के विकास के लिए केंद्रीय मंत्री

से मुलाकात की और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का प्रकोप जारी, दिन के साथ रातें भी काफी गर्म। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अविनाश मल्होत्रा ने तैयार किया है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े पिछले दिनों अलवर पहुंचे। उन्होंने मत्स्य यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में भाग लिया। समारोह में उन्होंने 71 मेधावी छात्रों को उपाधि और मेडल प्रदान किए। इनमें 37 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 28 पीएचडी उपाधियां शामिल हैं। राज्यपाल ने समारोह में कुल 44,293 छात्रों को डिग्री और उपाधि प्रदान की। बीते दिनों केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर शहर में पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आमजन और विभिन्न संस्थाओं से लाइब्रेरी के लिए पुस्तक दान करने की अपील की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले दिनों जिले में भी एसआई पुलिस भर्ती 2025 की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दो दिन तक दो दो पारियों में हुई इस परीक्षा के लिए कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सख्त निगरानी की गई। साथ ही डमी कैंडिडेट पकड़वाने या नकल की सूचना देने वालों के लिए 1,00,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई। अलवर में नगर निकाय चुनाव के लिए जिले के सभी वार्डो की निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा रही हैं। नगर निगम के 65 वार्डो के लिए निर्धारित सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर प्रगणक के पास उपलब्ध फोटो युक्त मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार और योजना से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए पिछले दिनों जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 575 लाभार्थियों के पंजीकरण किए गए और 243 आवेदकों ने मौके पर ही वेंडर का चयन किया। शिविर के दौरान लाभार्थियों को इंडक्शन कुक टॉप भी वितरित किए गए। ग्राम रथ अभियान के तहत जिले में पिछले दिनों विकास रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। ये रथ जिले के अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कठुमर और थानागाजी में विभिन्न क्षेत्रों में 15 दिनों तक संचालित होंगे। इन विकास रथों के माध्यम से 13 सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और पात्र लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। जिले में संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती श्रद्धा भाव से मनाई गई। शहर में कई स्थानों पर कार्यक्रम और समारोह आयोजित हुए। इसी कड़ी में जेल सर्किल से अंबेडकर सर्किल तक मैराथन और स्वास्थ्य दौड़ के साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। अंबेडकर छात्रावास में विचार गोष्ठी और सामुदायिक भवन में जनसभा का आयोजन हुआ। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती के अवसर पर भी जिले में कई कार्यक्रम हुए। कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। नगर निगम कार्यालय सहित सभी उपखंड कार्यालयों में महात्मा ज्योतिबा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर समाज के विकास का प्रण लिया गया। सरिस्का बाघ परियोजना की बफर रेंज में इन दिनों बाघिन ST-19 और उसके 4 शावकों की अच्छी साइटिंग देखी जा रही है। सरिस्का में वर्ष 2008 में बाघों के पुनर्स्थापन के बाद अब यहां बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। जिले में पिछले दिनों मौसम के कई रूप देखने को मिले। कभी तेज गर्मी तो कभी आंधी बारिश और ओलों का दौर चला। फिलहाल जिले में एक बार फिर से तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के समय अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर ना निकले, साथ ही तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इधर जिला प्रशासन भी तेज गर्मी से लोगों के बचाव के लिए प्रयासरत है। वहीं नगर निगम की टीम शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही है। जयपुर में आयोजित ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार में भाग लेने आए पोलैंड, थाईलैंड, स्लोवाकिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी देशों के टूर ऑपरेटरों के दल ने पिछले दिनों सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधियों ने इको टूरिज्म गतिविधियों और टाइगर सफारी का भी लुत्फ उठाया।
सरिस्का में पिछले दिनों वन्य जीव गणना संपन्न हुई, इस बार बघेरों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा लंगूर, बंदर और

0: नील गाय की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाजरी भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था सो कारगर बतायो। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरा मात है, राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान माए हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रस आगे रात भी घने गरम। समाचार आ रहे सागे, मैं रचना पारिक और अब है समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाबा खातर सगलाऊं एकजुट हो बारी अरज करी। वे कया के राष्ट्र निर्माण माए समाजरी भागीदारी राजनीतिक व्यवस्थाओं बत्ती कारगर है। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु माए आर्ट ऑफ लिविंग री 45वीं जयंती जलसा माए बोल रहा। वणा संस्थान माए नया बणिया ध्यान मंदिर उद्घाटन भी करियो। इन मौके श्री मोदी पर्यावरण खातर जिम्मेदारी, नौजवाना ने रोजगार और आंतरिक शुचितारी भावना रे सागे राष्ट्र बनाबा माए सगड़ा मिलर काम कर बारी अरज करी।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री कया के आध्यात्मिक केंद्रारा समर्थनों कास्कारा ने प्राकृतिक खेती ने बढ़ावो देवा और धरती ने नुकसान देबा वाला रासायनिक उर्वरक सु बचाबा माए इमदाद मिल सके है। देशभर माए काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। सोमनाथ मंदिर माए विया हमला रा 1000 बरस और मंदिर पुनर्निर्माण रा 75 बरस पूरा हो बारे मौके ओ पर्व मनायो जा रियो है। राष्ट्रीय जलसो गुजरात रा सोमनाथ मंदिर माए अमृत पर्व रा रूप माए मनायो जा रियो है। प्रधानमंत्री श्री मोदी री मौजूदगी माए काल ध्वज पूजा वेला अमृत पर्व रे मौके पुनर्निर्मित मंदिर रा शिखर रो 11 तीर्थ स्थलारा जलों अभिषेक करियो जावेला। प्रधानमंत्री श्री मोदी कया के विकसित भारत खातर इन भात रा मौका नुवी ऊर्जा देवे है।
2: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
1: राज्य में ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनायो जावेला। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुरा झारखंड महादेव रामिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जलसा माए शामिल वेला। कला और संस्कृति महकमारी शासन सचिव सुचित त्यागी बतायो के इन मौके प्रदेश भर माए शिव मंदिरा माए खास धार्मिक कार्यक्रम वेला, सागे ही राष्ट्रीय आयोजन रो सीधो प्रसारण भी करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा माथेरिया, वणा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मुलाकात करी। इन दौरान राज्य माए जल जीवन मिशन री प्रगति, राम जल सेतु लिंक परियोजना और जमुना जल समझौता माथे चर्चा करी गई। सागे ही राजस्थान खातर न्यारी न्यारी महताऊ सिंचाई और पेयजल परियोजना वा खातर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल सु भी भेंट करी। इन दौरान राजस्थान माए ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा और शहरी विकास सु जुड़िया विषय माते बातचीत हुई। वणा भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बी एल संतोष सु भी भेंट कर हाल ही माए विया विधानसभा चुनाव माए पार्टी री जीत री बधाई दी।

0: केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर माए साइकिल रैली ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। रैली माए बड़ी तादाद माए महिलावां भाग लीना। श्री यादव सगड़ा ने मातृ दिवस री शुभकामना मा देता थका कया के महने जन्म देबा वाली माँ और धरती माता दोनों रो आभारी रहनु चाहिए। आरे बिना मिनख रो अस्तित्व नी रह सके है। केंद्रीय मंत्री श्री यादव और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज अलवर खैरथल तिजारा और कोटपुतली हलकारा करीब 10,000 करोड़ रुपया री लागत वाली विकास परियोजना वारी समीक्षा करी। अलवर माए प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका श्री यादव कया के इन विकास कामा ने तय बगतरी मियाद माए पूरो करियो जावेला।
1: जो राम जल सेतु परियोजना है उसमें विशेष रूप से डडीकर का रिजर्वायर, नीमराना का रिजर्वायर, अलवर भरतपुर चंबल मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को लेकर के, यमुना लिंक प्रोजेक्ट हरियाणा और राजस्थान को लेकर, राणा प्रताप सागर से बिलासपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, उसके साथ ही अलवर शहर के वाटर सप्लाई के 25 करोड़ के विषयों को लेकर, उसके साथ ही जहाँ तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का विषय है, रामगढ़ में जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं वो हमारा एनसीपी जोन में आ रहा है, उसको लेकर के चर्चा हुई।
0: शिक्षा मंत्रालय गर्मी री छुट्टियां माए देश भर स्कूल माए भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर राखेला। एक हफ्ता माए ओ शिविर भारतीय भाषावा माए बुनियादी संवाद कौशल सिखावा, शब्दा ने जानबा, आपरो परिचय देवा और रोजमर्रा जीवन री बातचीत और संस्कृति री सराहना माते केंद्रित वेला। इनरो मकसद राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे मुजब समावेशी और समान शिक्षा रा दृष्टिकोण ने बढ़ावो देनो है। ये समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो। व्याख्याता कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 माए पेपर लीक और नकल गिरोरो खुलासो वियो है। एसओजी रा एडीजी विशाल बंसल आज जयपुर माए प्रेस वार्ता माए बताया के भर्ती परीक्षा माए मेल मिलापों पेपर लीक करियो गयो और फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट जरिए नौकरी हासिल करबारी कोशिश करी गई। गिरफ्तार अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव पूछताछ माए पेपर लीक री बात कही। एडीजी बतायो के पेपर लीक मामला माए शेर सिंह भी गिरफ्तार करियो गयो है। आरपीएससी रा पहला आला सदस्य बाबूलाल कटारा और उनका रिश्तेदार विजय डामोर ने भी गिरफ्तार करियो गयो है। एसओजी कटारा और आरपीएससी सदस्य बनबारी नियुक्ति प्रक्रिया और उन रिकानी करिया गया पेपर लीक से जुड़िया नेटवर्क री भी जांच करी जा रही है।
2: हमारे द्वारा बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के गिरफ्तारी के उपरांत में उनसे पूछताछ करी जा रही है। पूछताछ में तरह तरह के जानकारियां प्राप्त हो रही है। मेन चीज कि बाबूलाल कटारा द्वारा स्वयं द्वारा क्या क्या गड़बड़ियां करी गई उसके बारे में जानकारी, इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने स्वयं ने नहीं करी हो लेकिन उनकी नॉलेज में होगी और क्या क्या गड़बड़ियां हुई है उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित करी जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इन बीच नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित गड़बड़ियां खातर राजस्थान एसओजी री जांच माए इमदाद करी है। एनटीए इन मामला माए सगड़ा जरूरी डेटा और तकनीकी सहायता भी दे रही है। एनटीए रिकानियो जारी बयान माए कहो गयो है कि 3 मई ने आ परीक्षा पूरा सुरक्षा प्रोटोकॉल रे तहत राखी गई ही। 7 मई ने परीक्षा रा बारा माए कथित कदाचार गतिविधियां रा बारा माए एनटीए ने सूचना मिली। इनरे पछे जरूरी कार्यवाही खातर ये सूचना केंद्रीय एजेंसिया ने भेज दी गई। फिलहाल आरी जांच चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभावित बाढ़ और लू रा हालात से निपटबा खातर देश रे तैयारियां नी समीक्षा बैठक करी। नई दिल्ली माए आज एक उच्च स्तरीय बैठक माए श्री शाह सरकारी एजेंसियां ने तैयारियां रो जायजो करियो। शुरुआती चेतावनी प्रणालियां संसाधन री तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय री समीक्षा करी। गृहमंत्री देश माए करिया जा रिया दीर्घकालीन बाढ़ निवारण उपाय री प्रगति री भी समीक्षा करी। जनमाए महताऊ ढांचागत परियोजना वान बचाव नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान माए वैज्ञानिक प्रगति भेली है। बैठक में जन जागरूकता जानमाल और नुकसान ने रोकबा खातर निर्माण कार्यक्रम जरूरी राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियां रा चावता भंडार ने पक्को करबा माथे भी चर्चा करी गई। बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर और आरएसआरए रा हल्का माए हीट वेव रो असर बणियोड़ो है। मौसम महकमो आवता 2-3 दिना खातर पश्चिमी राजस्थान रा कई जिला माए तेज गर्मी और लू खातर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी।

0: करियो है। 8 दिन रसा गए रात माए भी हीट वेव रो असर रह सके है। आज भी आ जिला माए लू रो असर रियो। जिन जिला माए दिन रो पारो करीब 44-45 डिग्री सेल्सियस मापियो जा रियो है। वठी ने चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर, जालौर और श्रीगंगानगर भी तेज गर्मी री चपेट माए हैं। अठी ने पूर्वी राजस्थान रा जिला माए बतो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस सो नीचे दर्ज करियो जा रियो है। हालांकि जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सीकर, टोंक और झुंझुनू माए धूप री तपिश और उमस लोगों ने परेशान कर रही है। सुमारे सिंजा हल्की हवा चालबासु मामूली सी राहत मिल रही है। कालू राज्य माए नया पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय हो बारा आसार है। इनसो कई जिला माए आंधी और बिरखा होबारो अंदाजो है। सवाई माधोपुर जिला माए ढांडा ढोरी, मुंह पका, खुर पका बीमारियां बचाबा खाटा टीकाकरण करियो जा रियो है। पशुपालन महकमा री कानियो ओ अभियान 15 मई तय चालेला। महकमारा संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग बताया कि जिला माए हाल ताई 2.5 लाख बत्ता पशुआरे टीका लगाया जा चुकिया है। वणा पशुपालकों गोवंशो टेम माथे टीकाकरण करवार इन अभियान माए भागीदारी निभावारी अरज करी है।
1: सवाईमाधोपुर जिले में खुरपका मुंहपका रोग के लिए जो FMD टीकाकरण कार्य का सप्तम चरण अभी इस वर्ष राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर जिले ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करते हुए अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया है। मेरा समस्त जिले के पशुपालकों से अधिक पशुओं में अपने टीकाकरण कराने का आह्वान किया जाता है ताकि हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें ताकि ये पशुओं को नुकसान न पहुँचा पाए।
0: उत्तर पश्चिमी रेलवे बाड़मेरू हरिद्वार बीच कालू खास रेलगाड़ी चलावेला और सेवा सप्ताह में 2 भगत चालेला। उत्तर पश्चिमी रेलवारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन रे मुजब ये रेलगाड़ी बाड़मेरू हर सोमवार और गुरुवार ने मुहैया रेवेला। यह खास गाड़ी 16 जिलाई तई चालेला। और अब आखिर माए खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण में समाज री भागीदारी ने राजनीतिक व्यवस्था से कारगर बताया। देशभर में काल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रो आयोजन, राज्य स्तरीय जलसो जयपुर आज झारखंड महादेव मिंदर माए वेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली रा दौरा मात है। राज्य रा विकास खातर केंद्रीय मंत्रियों मुलाकात करी। और पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव रो प्रकोप जारी, दिन रसा गए रात भी घनी गर्म। इंद्र सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 8 पूरो वियो। मां को आगलो समाचार बुलेटिन काल सोमवार 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं शाम के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण परिवारों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम खेती और घर।

0: किशन भाई ने अपनो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा।
1: सा।
0: देखो कार्यक्रम टाइम भी है और देखो भांत भांत की जानकारी लेना है यहाँ। और किशन भाई देखो आज ने कार्यक्रम में आप बात करेंगे कि जो पशु और टीकाकरण है मंडो महत्व कही है। आप ही जाना कि देखो पशु और जो टीकाकरण है वो पशुपालन और डेयरी प्रबंधन रो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल पशुओं ने जानलेवा बीमारियों बचाए बल्कि पशुपालक की आर्थिक स्थिति ने भी सुरक्षित रखे। पशु टीकाकरण ने जैसे महत्व की बात करें तो देखो यह रोगारी सुरक्षा करें। जड़ में आप ही देखा कि पशुओं और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उन्हें बढ़ावे। और में आप ही देखा खुर पका वेग्यो है, मुंह पका वेग्यो है, गलगोटू रोग वेग्यो है, लंपी वेग्यो है, और ब्रुसेलिस जैसे संक्रामक और घातक बीमारियां रोक पाते सबसे प्रभावित तरीको है सा।
1: बिल्कुल। और देखो भाई, आर्थिक नुकसान हो बचाव भी वे है। यदि कोई पशु बीमार भी जावे तो देखो पशुपालक पे दोरी मार पड़े। इलाज रो खर्चो भी वे, दवाइयाँ और डॉक्टरी फीस रो भी भारी बोझ बना माथे पड़े। उत्पादन में भी देखो गिरावट आवे। बीमार पशु रो जो दूध उत्पादन वे वो अचानक कम भी जावे। जण्यू कही है कि जा आए है वह भी घटती रहे। तो समय पर अनारो जो टीकाकरण है अना दो खर्चों बचावे है सा।
0: बिल्कुल किसान भाई। और देखो कि जितना पशुपालन में आप देखा कि पशु वाला सही समय पर टीका लग जाएगा तो हर स्थिति में देखो पशु स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और एक बात कहेंगे कि उत्पादकता में मन में भी वृद्धि होगा। जितना आप देखा कि एक स्वस्थ पशु अपनी पूरी क्षमता ला रहे दूध कार्य और खेती रो काम करे और टीकाकरण ये सुनिश्चित करे कि पशु बार बार बीमार नहीं पड़े। जनों आप देखा कि वनडी अवधि में शारीरिक क्षमता में विकास हुए, दूध देवारी अवधि में बनी रहे और हर प्रकार जो खेती बाड़ी रो काम है पशु आराम कर सके।
1: बिल्कुल। और नरी हरी बीमारी ऐसी वे जो पशुआरे द्वारा मनुष्य में भी फैल सके है, जिस तरह रेबीज है या पचे ब्रुसोलिस है। पशुआरों टीकाकरण करवो कही कि आना बीमारियारो जो है इंसान में इन्हें फैलवा वालों खतरो कम भी जावे। जड़ियों परिवार और समुदाय जो है वे सुरक्षित रहे है। और अंडरलाल लारे देखो अणियों मृत्यु दर में भी कमी आवे है। नरी सारी महामारियाँ देखो पूरा पूरा झुंड ने खत्म कर सके। टीकाकरण पशुआरी अकाल मृत्यु ने तो रोके से जड़ियों पशुपालक री पूंजी पशुधन ईदो ही सुरक्षित रहे सा।
0: बिल्कुल किसान भाई। और देखो अगर कोई पशु बीमार भी वे जाए तो आपने घबराना नहीं है। आड़े बड़े जो भी चिकित्सक है, जो भी पशु चिकित्सक है वनों परामर्श लेना। कतरी बार कोई जानवर बीमार भी वे जाए तो देखो वणी पशु ने दूसरा जो स्वस्थ पशु है वनों भी दूर रखना है। क्योंकि कतरी बार सकारात्मक बीमारी है वह फैलती रहे और पत्तो लागे हो कि आपने जितना भी पशु है वे बीमार वे गया और अधिकांश में आप देखा कि मृत्यु का कारण भी वे जाए। तो महत्वपूर्ण सुझाव है वनारो पालन भी आपने करना जरूरी है। जटे आप देख सका कि जो टीकाकरण कैलेंडर है वो देखो हमेशा सरकारी विभाग जो है पशुपालन रो वो जारी करे और टीकाकरण करने जो है आपने भी पालन करना है। लाल लाल आप देखा कि स्वस्थ पशु जो टीको है वो हमेशा टीको हमेशा स्वस्थ पशु ने लगाना है। यदि पशु पहले बीमार हुए तो डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है साहब।
1: बिल्कुल। और देखो भाई अनारा जी रिकॉर्ड है वी भी रखना चाहे कणी पशु ने कण कसो टीको कणी दन लगावनो है अंडो लिखित रिकॉर्ड प्रबंधन रखवारे वास्ते बहुत ही ज़्यादा जरूरी वे वे। और देखो उपचारू बेहतर बचावे वे। टीकाकरण में किया गया छोटा सा खर्च भविष्य में बड़ा बड़ा नुकसान बचावे। सबू ज़्यादा समझदारी जो भरियो भरियो तो को निवेश भी वे वे। अने हूँ कही है कि अपना जो पशुपालक है अपने किसान भाई है अगर अनारे टीकाकरण करी देगा तो देखो भाई वना ने खुद ने भी फायदो वेगा। जो डेयरी प्रबंधन भी चल रहा है वणी महीने उत्पादन में भी बढ़वार वेगा। और देखो अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो मन महीने खुशहाली भी वेगा और आमदनी भी दोगुनी बढ़ती तकी रहेगा सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और होना वायु राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सा।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: राम राम अनिता भाई सर, राम राम।
2: राम राम रामा भाई, राम राम।
1: खेती और घर का होने वाला हंगल।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: तो किसान भाई देखो, ये राजस्थानी लोकगीत होने और लाला देखो संदेश भी होने हैं, और देखो कि सरकार द्वारा देखो कि बहुत सारी जो योजना भी चलाई जावे, और देखो कि मौसम भी बात करें कि आपने देखो आवाला समय में देखो मौसम जो है वो मौसम कशो करेगा, और देखा कि मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना आधार पर आगामी दिन में देखो मौसम शुष्क रहेगा, और जड़े बात करें हवाई गति 2-4 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम चलेगा, और अधिकतम तापमान 39-43 डिग्री और न्यूनतम 24-27 रहने की संभावना है। जटे सापेक्ष आर्द्रता की बात करें न्यूनतम 31-42 और अधिकतम 9-15% रहने की संभावना है।
2: बिल्कुल, और देखो खेती बाड़ी रहते अपने किसान भाई ने कहवा कि देखो मिट्टी परीक्षण रहते 30 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी रो नमूनों भेड़ो कर प्रमाणित एजेंसियों मिट्टी की जाँच करानी चाहे। गहूँ की बात करें तो देखो अंदाज अनाज ने भंडारण में राखवा पहला भंडार कर रही हाउ तरीका सफाई कर लेनी है, अनाज ने हाउ तरीका हुकई लेना है, कूड़ो कचरो जो भी है विने जलाई ने या पे दवाई नष्ट कर देनो है, दाणा में नमी नहीं रहनी चाहे और 12% ज़्यादा नमी नहीं रहनी चाहे, और भंडार कर रही जी छत्ता है दीवारा है फर्श है वटे एक भाग मेला थान 50 cc ने हो भाग पानी में मिलाई ने छिड़काव करनो है, पुरानी जी बोरिया है वणा ने अगर काम में लेनी पड़े तो वणा ने भी एक भाग मेला थान महीने हो भाग पानी में लई ने घोल वणी ने 10 मिनट तक भींजोई ने छाया में हुकई देनी है।
1: बिल्कुल किसान भाई, जो मूंगरी बात करें ग्रीष्मकालीन मूंगरी फसल में फूलावर सिंचाई करनी है, कपास की बात करें तो अने सप्ताह में किसान कपास की बोई बात खेता ने तैयार कर ले, गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज कणी विश्वसनीय स्तर तो खरीदे। जटे बेल वाली सब्जियों की बात करें तो कुष्माण कुल सब्जियों में लाल भ्रंग कीट अंकुरित नई पत्तियां ने खाई ने फसल ने नुकसान पहुंचावे। अंडी रोकथाम बात कार्बेरिल 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर दर में सुबह और शाम में बुरकाव करना है सर।
2: बिल्कुल, जायद मूंगफलिया की बात करा तो देखो खरपतवार प्रकोप रहा अगर हेदान नजरे आई जावे तो वहां नियंत्रित करवा वे उचित पेंगिंग करने इंटरकल्चरल ऑपरेशन और हाथू घुड़ई की जरूरत पड़े है। भिंडिया की बात करा तो भिंडी महीने यदि फली आकार 5 इंच लंबी वही जा तो तुड़ई कर लेनी है, तुड़ई रे केड़े भिंडी री जा फसल है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर दरू जो है यूरिया नाक देनी है।
1: बिल्कुल, और ग्रीष्मकालीन में देखो कि हरो चारो जो है वो काफी आम बात है, अंडे आते हरा चारा वाली फसल जैसे ज्वार है बाजरा है मक्का है लोबिया हंडी बुआई करनी चाहे, और अन्य समय में विशेष रूप आप देखो कि जो ढांडा चौपाया आना विशेष रूप ध्यान रखना है, गर्मी का मौसम है और जो पशु बन रहा तो देखो बटे तावड़ो भी पड़ रो है तो वही सके तो बोरिया जो है वो गीली करने साइड पर बांध देनी है, और वही सके तो कूलर है पंखो है वो लगे देना, और वे तो शाम समय या सुबह समय मेन रखना है धन्य बढ़िया कटे चौगान उन्हें तो कोवे बटे छाया और स्थान है बटे बांधना है, और समय समय पे देखो कि जो दाना है पानी है चारा है अंडी व्यवस्था भी आपने करनी है सा।
2: बिल्कुल सा, और लाल लारे देखो ये तो आप घनी हूँ बात के दिन लाल लारे बनारे टीकाकरण रूप भी ध्यान रखना है, और अंडे लाल लारे देखो पशुशाला की स्वच्छता रो भी विशेष रूप ध्यान रखना है, वनारी जी पानी की टंकिया है रोज पानी बदल बदल ने धोई ने साफ हो छाण ने पानी भरना है, और अंडे लाल लारे देखो वनारे पशुशाला महीने भी विशेष रूप स्वच्छता रो ध्यान रखना है, जटे भी मूत्र वेवे है गोबर वेवे है तो भी तुरंत हटाई देना है क्योंकि माखी माचर वेवे और भी बीमारियां पैदा कर सके।
1: बिल्कुल सा, और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और देखो सभी किसान भाइयों मनोरंजन भी करावा और होना हुआ प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।
2: हाँ साहब।

0: तो किसान भाई देखो रासायनिक लोग की सुन रहे हैं, लाल संदेश सुन रहे हैं और लाल जानकारी दे रहा है। और देखो सरकार द्वारा घणीहारी योजना चल रही है। योजना का उद्देश्य है कि देखो कि व्यक्ति ने सही प्रकार की जानकारी मिल जाए। और योजना का देखो उद्देश्य यो भी है कि हर व्यक्ति रो जो तबको या हर जो तबका रो जो वर्ग रो व्यक्ति है बिना हर प्रकार की योजना का लाभ मिले और हर प्रकार की योजना देख सके। देखो सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, उनका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिन्हें आप ही आयुष्मान योजना भी कहा। देखो भारत सरकार देखो एक महत्वपूर्ण योजना है। झंडो उद्देश्य है कि गरीब और कमजोर परिवार ने भारी चिकित्सा खर्चों में बचाना है। 2026 से नवीनतम अपडेट्स में अभी बात करा कि अंडो मुख्य लाभ है लगभग 5 लाख रो कवर अपने मिलेगा। प्रत्येक परिवार ने प्रति वर्ष 5 लाख तक रो मुफ्त इलाज मिलेगा। लाल लाल कैश लेस की सुविधा भी है सा।
1: बिल्कुल, और कैशलेस सुविधा की बात करें तो देखो भर्ती वेवाउन लेने डिस्चार्ज वेवा तक सब खर्चो सरकार वहन करे। अपने अस्पताल में पैसा देवारी जरूरत भी नहीं पड़े। पुरानी जितनी भी बीमारियां शामिल है वे भी अणी योजना के तहत पहला मौजूद जी बीमारियां है पहला दरनी कवर वे जावे सा।
0: बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल सा। और देखो कि जटे अस्पताल चयन की बात करें तो देश भर के कहीं भी सरकारी या पैनल में शामिल निजी अस्पताल में देखो अंडो इलाज करो जा सके। क्या मतलब है कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है वे भी अणि योजना रहते हैं जुड़िया तक है। आपने जईने देखो कि अणि फोन रे माध्यम देखना है कि कई प्रकार जो हॉस्पिटल है वो जुड़ियो है कि नहीं जुड़ियो है।
1: बिल्कुल
0: योजना रे
1: सर,
0: विस्तार की बात करें तो 70 ऊपरे जो व्यक्ति रहे लोग है जना भी वरिष्ठ नागरिक हैं, अधिक आयु जो वरिष्ठ नागरिक है वे भी अणि योजना का लाभ लेगा। चाहे सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी वे मन में देखो कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी जारी की दाहेसा।
1: बिल्कुल। और राजस्थान विशेष से अगर बात करें तो देखो राजस्थान में अन्य मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पहला इन्हें चिरंजीवी रे नामों जानियो जातो हो, जटे राज्य सरकार द्वारा कवरेज की सीमा और भी ज्यादा ही 25 लाख तक बढ़ाई दी दी ही। अभी अन्य पात्रता की बात करा तो देखो यह योजना मुख्य रूप 2011 री जनगणना रे आंकड़ा पे आधारित है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्हें कच्चा मकान वाला परिवार, भूमिहीन मजदूर या पची जी भी अनुसूचित जाति जनजाति रा परिवार है, वी शहरी क्षेत्र में चिन्हित 11 व्यावसायिक श्रेणी जी लोग है जिससे रेहड़ी पटरी वाला, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी ये सब जो है अन्य योजनाओं जुड़ सके है।
0: बिल्कुल साहब। देखो सरकारी कर्मचारी है या 10,000 अधिक मासिक आय वाला है जिन्हें बड़े मक्को मकान है चौपाई वाहन है वना देखो तो लाभ नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल
0: आवेदन चेक करवा प्रक्रिया देखा तो आप आधिकारिक वेबसाइट है beneficiary.nha.gov.in अन पे जाइन आप मोबाइल नंबर या आधार कार्ड करने चेक कर सको कि आप नाम लिस्ट में है या नहीं है।
1: बिल्कुल। और आयुष्मान कार्ड की बात करें तो यदि आप नाम लिस्ट में है तो आप खुद ऐप रे जरिए नजदीकी जितना भी ई मित्र है वटे जाइने अपने ई KYC करवाईने कार्ड डाउनलोड भी कर सको हो। हेल्पलाइन नंबर री अगर बात करा तो देखो कहीं भी जानकारी रे वास्ते टोल फ्री जी नंबर दे रखा है 1-4-5-5-5 पे आप कॉल भी कर सका हाँ। और अपने क्षेत्र रा जितना भी नजदीकी अस्पताल है वनडी सूची या कार्ड बनवा वाली जितनी भी प्रक्रिया है वनडे बारे में भी जान सका हाँ।
0: बिल्कुल सर। और देखो हेल्पलाइन नंबर आपने एक बार पाचा होता था 1-4-5-5-5 तो अनपे जी ने देखो कि जो आयुष्मान कार्ड योजना है अंडो आप लाभ ले सको। अगर आप लिस्ट में नाम नहीं है तो आप CSC सेंटर पे जाइने ई KYC करने भी कार्ड जारी कर सको। तो देखो सरकार द्वारा जो भी योजना दी जा रही है अंडो आपने लाभ लेना है। और देखो कि कार्यक्रम में मनोरंजन नहीं हुए तो देखो कार्यक्रम आगे भी नहीं।

0: 90. किसान भाई देखो रासायनिक लौकिक थोड़े और देखो बात करांगा कि जो खाद्य प्रसंस्करण जिन्हें अभी फूड प्रोसेसिंग भी कहाँ और देखो यह एक ऐसी तकनीक है झंडे माध्यमों आप देखा कि जो कच्चा कृषि का उत्पाद है जिससे अनाज वेगी हो फल वेगी हो सब्जियाँ वेगी दूध वेगी अन्य सामग्री वेगी तो विभिन्न विधियों द्वारा देखो खावा योग्य और सुरक्षित और अधिक समय चला वाला उत्पाद में बदलो जाए। जटे खाद्य प्रसंस्करण के लाभ की बात करें तो देखो खाद्य सुरक्षा में बर्बादी में कमी हुए कटाई के बाद अनाज और फलाने एक बड़ा हिस्सा में भंडारण न व्यवहार खराब भी जावे और प्रसंस्करण माध्यम में आप देखा कि उत्पाद की जो सेल्फ लाइफ है वह एकदम बढ़ जावे ऐसा जिस तरह की टमाटर और पेस्ट बनायो या दूध में पाउडर बनायो जिन्हें कई महीने तक इस्तेमाल आप कर सका ऐसा।
1: बिल्कुल और पोषण मूल्य में अगर वृद्धि की बात करा तो देखो प्रसंस्करण के दौरान कही है कि जी खाद्य पदार्थ अना में विटामिन और खनिज अलग मिलाया जावे अना ने आप फोर्टिफिकेशन भी कही सका जिससे नमक रे महीने आयोडीन मिलानो दूध और तेल रे महीने विटामिन ए और डी रो मिश्रण करनो। आर्थिक लाभ और रोजगार की अगर बात करें तो देखो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र रे बीच री कड़ी है। किसानारी आय री भी अगर बात करा तो यदि किसान अपनी फसल ने हीदो वेचे तो वी बेचवारी बजाय प्रसंस्कृत करने वेचे जिस तरह आम री जगह जेम है अचार है तो बनाने मूल्य मिल सके है।
0: बिल्कुल सर प्रसंस्करण देखो यूं वे कि जो सामग्री वह ज़्यादा समय तक चल सके इन्हें भंडारण कर सका और देखो आवा समय जहाँ कीमत बढ़िया हुए इन्हें बेचना अणु आप देखा कि रोजगार और जरियो भी बढ़ियो है अन्य क्षेत्र में आप देखा पैकेजिंग है मार्केटिंग है या लॉजिस्टिक वाते लाखों लोगों ने रोजगार भी मिल रो है। लल्ला रे बात करा तो देखो सुविधा समय और श्रमरी बचत भी थी और आज रे व्यस्तम जीवन में आप देखा कि व्यक्ति चाहे कि रेडी टू ईट या रेडी टू कुक यानी एकदम मिलने सहायक सामग्री तैयार व्यक्ति की मिले तो उन्हें आप देखो काम में कर सका। कई बार आप देखा कि जैसे फ्रोजन सब्जियाँ वेगी है कटो तो को अनाज वेगी है तो उनमें आप देखा कि भोजन वनावरी प्रक्रिया है वह भी आसान भी जावे काम जो है वो जल्दी भी जावे सा।
1: बिल्कुल और परिवहन री अगर बात करें तो देखो परिवहन में भी आसानी वे प्रसंस्करण के बाद में खाद्य पदार्थ और वजन और आकार जो है अक्सर कम वे जावे वना ने दूर दराज रे बाजार तक ले जानो आसान वे जावे और सस्तो भी वे जावे जिससे भारी मात्रा में ताजा जी अंगूर की तुलना में किशमिश रो परिवहन जो है ज़्यादा सुलभ वे जावे। खाद्य प्रसंस्करण रे इस तरह मैंने देखो सबू ज़्यादा अंडा अलग अलग अलग अलग अणी मैंने स्तर है विवरण है अणी मैंने देखो अगर अंडे प्राथमिक स्तर की बात करें तो सबू पहला अंडी सफाई करनी छंटाई करनी ग्रेडिंग करनी और गऊ रो जो है भूसो अलग करनो। द्वितीय की बात करा तो देखो भाई उत्पादक रो रूप बदलनो गऊ जिसर आटो बनावनो और तीसरा की बात करा तो देखो सीधो खावारे योग्य उत्पादन बनानो आटा बिस्किट या पचे ब्रेड बनानी।
0: बिल्कुल सर और देखो ये व्यवसाय बताया तो देखो ना व्यवसाय में एक ही समय भी लागे जैसे द्वितीय व्यवसाय बात की तो देखो गेहूं रो आटो बनाना आटा रो उपयोग देखो अलग अलग तरीका में कर सकूँ। चुनौतियाँ की बात करना तो कोई लाभ है और प्रसंस्करण में आप देखा भोजन में कभी कभी नमक चीनी और परीक्षा की मात्रा अधिक वे जावे और मैं संतुलित चयन बनो चाहिए।

0: और ये भी डिब्बा बंद है तुम्हारा और भी विशेष रूप भंडारण करना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ डिब्बा बंद है तो खराब हो जाए। तो देखो डिब्बा बंद में भी जब डेट दी थी कि वर्ण में आपने देखने ध्यान लेनी है, तो अगर खाद्य प्रसंस्करण करांगा तो देखो कहीं भी चीज़ यहाँ पर ज़्यादा समय तक चले सकेंगा, बिना आसानी दूसरी जगह व्यापार में बेच सकेंगा और परिवहन सुविधाओं भी लाभ आपने मिल सकेगा था। तो देखो कार्यक्रम में या तो आपकी बात की थी कि कई तरीकों खाद्य प्रसंस्करण है आज देखो एक जरूरत भी है और कार्यक्रम में आगे बढ़ा होना जो रास्ता नहीं लोग की।
1: हाँ सर।

0: KIR at 90.
1: किसान भाई देखो रासायनिक लोग थोड़ा देखो कार्यक्रम में आगे बात करांगा कि जो फसला में पोषक तत्व आप डाला तो वंडा का फायदा है। तो देखो फसल में आयरन वे होएगा तो इल्ली नहीं आएगा। फसल में यदि आप देखो जिंक रो प्रयोग करांगा तो देखो कोई भी वायरस से वंडो क्रोप नहीं होगा। फसल में देखा कि अलग अलग पोषक तत्व है, जिस तरह कैल्शियम है, बोरान कैल्शियम है, पोटास है। तो अगर फसल में कैल्शियम होगा तो रस उससे कीट नहीं आएगा। फसल में अगर बोरान कैल्शियम नहीं होगा तो नई कोपला नहीं आएगा और फूल नहीं आएगा। और आप ही देखेंगे फसल में पोटास बराबर मात्रा में नहीं आवे तो देखो कि फसल में कसा नहीं आवे, फल कम लागे और फल छोटा रह जावे ऐसा।
2: बिल्कुल। और देखो फसल में अगर सल्फर वेगा तो देखो फंगस भी नहीं लगेगा। फसल में तांबा मैंगनीज वेगा तो बैक्टीरियल जी ब्लास्ट है जैसी बीमारियां नहीं आएगा। और अंडे लाल लारे देखो अबारा टेम में मिट्टी की ऊपरी सतह महीने जी खनिज तत्व है अगर इन्नी वेगा तो फसला में बीमारियां आई जावे। खनिज तत्व की कमी फसल की उपज भी गिरे है। असल में देखो फसल महीने फॉस्फोरस नहीं वेगा तो पत्ता जी है वे टेढ़ा मेढ़ा वे जावे और फसल की जहाँ ऊंचाई है वह भी नहीं रहे। फसल महीने जिंक सल्फर नहीं वेवे तो देखो फसला महीने फला जी फल है वना महीने स्वाद भी नहीं आवे सा।
1: बिल्कुल सा। देखो फसला में जो फल आपी है वंडो स्वाद आनो भी जरूरी है।

पत्ता री बढ़वार भी बनी जरूरी है। तो माणो तो यूज कहना है कि फसल में जो भी पोषक तत्व है जैसे आयरन वेगियो, जिंक वेगियो, कैल्शियम वेगियो, बोरान कैल्शियम वेगियो, फास्फोरस वेगियो है, जिंक सल्फर वेगियो है, तांबा और मैग्नीज वेगियो है, तो ये देखो जो पोषक तत्व जितनी मात्रा चाहे निश्चित मात्रा करने वन में डालनी है, तो आपने जो फसला है वहाँ बढ़वार भी वेगा और लाल आमदनी भी वेगा। तो देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा होना ये रासायनिक लोकगीत।

0: तो किसान भाई देखो, रासायनिक लोकी थोड़ी देखो, समय समय पे आपने महत्वपूर्ण सूचना देनी भी जरूरी है। देखो चंदा कंदन बारिश वे वे या गर्मी वे वे, तो गर्मी में देखो कि जो जानवर है ये बाहर निकल जाए, जैसे अभी सांप की बात करा तो सांप भी देखो इस समय में देखो गर्मी में देखो इतनी गर्मी पड़ रही है तो देखो बिल्ला मुँह बाहर निकले, कतरी बार देखो कि व्यक्ति ने काट भी ले, तो देखो अगर काट ले तो अंडों का ही बचाव करना है, ये ध्यान रखना है, समय खराब नहीं करना है, तुरंत अस्पताल पहुँचना है। सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि मरीज ने स्थिर करना है और सांत्वना देनी है कि 90% सांप जहरीला नहीं वेवे।
1: बिल्कुल, और सांप ने मारवा या पकड़वा की कोशिश नहीं करनी है, ना कहीं तांत्रिक रे भड़े जानो है। सांप ने वापस काटवारी जी कोशिश है वो भी हरगिज नहीं करनी है। बेल्ट है, आभूषण है, घड़ी है, अंगूठिया है, ये सब चीज़ें हटा ही देनी है, क्योंकि काटा लगा जगह पे देखो क्षेत्र में इन्हें सूजन भी आई सके है।
0: बिल्कुल साहब, पीड़ित शरीर कसा में कारण वस्तु नहीं रहने देनी है, काटा के स्थान पर ब्लेड या धारीदार वस्तु नहीं काटना है, जटा सांप काटे ओडे चीरो भी नहीं लगाना है, कारण एक चीरा लगाओ खून की धमनिया या नसारे नुकसान पहुंचा, साथ ही ब्लीडिंग की संभावना भी वे असोनी है कि चीरो लगाओ सांप जहर निकल जाएगा, बल्कि वंडो जो एब्सोर्प्शन है वो बढ़ जावे। तो जटा भी देखा कि सांप काटे वटे बिल्कुल मुँह जहर निकाले कोशिश नहीं करनी, वो घातक भी है सा।
1: और जैसे सांप काटे बटे देखो काफ़ी दबावों कड़ी भी चीज़ यू नहीं बांधनो, ऐसा में काटे लगा जगह पे देखो हड़वारों भी खतरों बढ़ सके है।
0: बिल्कुल साहब, और जानकारी देखो आपने दे रहा हूँ और आपने अगर लागे तो तुरंत चिकित्सक को परामर्श करना भी ज़रूरी है साहब।
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और होना यो प्यारा सो राजस्थानी लोकगीत।

0: तो किसान भाई देखो राजस्थानी लोकगीत होने और देखो कार्यक्रम में और भी बात करता है, लेकिन घड़ी घड़ी नाला तो देखो कार्यक्रम में विदा ले और टाइम भी रो है, तो आज्ञा दो चाला सा, जय जवान
1: जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण परिवारों का दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए आपको फिर से सुनवाते हैं फिल्म संगीत। रात की इस खूबसूरत बेला में आपका दिल से स्वागत है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात अपने आंचल में सुकून भर देती है, जब हवाएं धीमे धीमे कोई पुराना गीत गुनगुनाती है, तब ज़रूरत होती है कुछ ऐसे नगमों की जो हमारे दिल को छू जाए। मैं हूं फिल्म संगीत के साथ आपका अपना रेडियो दोस्त विवेक अग्रवाल। अगले 45 मिनट तक हम साथ रहेंगे, संगीत हमारे साथ रहेगा, कुछ शेर व शायरी होगी और कुछ रोचक बातें होंगी। आइए सुनते हैं पहला नगमा। रात चुप है मगर चांद खामोश नहीं, कैसे कह दूँ कि आज फिर होश नहीं। ऐसे डूबे हैं तेरी यादों के समंदर में कि अब कोई और एहसास बाकी नहीं।

दोस्तों, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आपके और हमारे साथ को 90 वर्ष का साथ हो चुका है। लगातार 90 वर्षों से आकाशवाणी आपकी सेवा में हाजिर है और आपको साहित्य, संगीत, संस्कृति की बेहतरीन बातों के साथ, रोचक जानकारियों के साथ आपकी सेवा में तत्पर है। दोस्तों, अब बात करते हैं फिल्मी गानों की और कुछ बातें और भी करेंगे आपके साथ। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो रात को और भी खूबसूरत बना देते हैं। पुराने दौर का संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। क्या आप जानते हैं, पुराने समय में रेडियो पर रात के कार्यक्रमों की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता होती थी। लोग छत पर बैठकर ट्रांजिस्टर के साथ चाय पीते हुए गाने सुना करते थे। उस दौर में संगीत लोगों की दिन भर की थकान को उतार देता था। तभी तो आकाशवाणी को आप और हम साथ लेकर चलते हैं। कुछ रातें सिर्फ गुजरती नहीं, याद बन जाती है। कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, दिल में उतर जाती है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, रात का समय दिल की बातों का समय होता है। दिन में जो बातें होठों तक नहीं आती, वो अक्सर रात की तन्हाई में आंखों से छलक जाती है। कभी गौर कीजिएगा, रात में धीमी आवाज़ में बजते गीत दिल पर ज़्यादा असर करते हैं, क्योंकि उस समय शोर कम और एहसास ज़्यादा होता है। तुम्हारी याद भी रात की तरह होती है, आती है और फिर सोने नहीं देती।
1: ये जो चिलमन है

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये वक्त रोक देता है। एक पुराना गीत अचानक हमें वर्षों पीछे ले जाता है, किसी चेहरे तक, किसी मुलाकात तक या किसी अधूरी कहानी तक। और सच कहूँ, रात में पुराने गीत सुनना ऐसा लगता है जैसे चांदनी भी साथ गुनगुना रही हो। दिल के कमरे में उजाला सा हुआ जाता है, दिल के कमरे में उजाला सा हुआ जाता है जब कोई पुराना गीत सुनाई दे जाता है, जब कोई पुराना गीत सुनाई दे जाता है।

साथियों, रिश्तों की तरह गानों की भी उम्र नहीं होती। कुछ नगमे सालों बाद भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने पहली बार सुनने पर लगे थे। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में अगर कोई चीज़ हमें पल भर का सुकून दे सकती है तो वो है अच्छा संगीत।

साथियों, रात के समय धीमी धुनों वाला संगीत सुनने में मन को शांति प्रदान करता है और तनाव भी कम महसूस होता है। इसलिए पुराने गाने हमें बहुत ही दिल को छू लेने वाले होते हैं। रात की तन्हाई में जब सुर सजते हैं, तब दिल के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। जब भी सुने, जहां भी सुने, आकाशवाणी उदयपुर सुने। और अब चल

बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी देर तक दिल में बजते रहते हैं। रात का असली जादू भी यही है। कम शब्द, धीमी बातें और दिल को छू लेने वाला संगीत। तभी तो कहते हैं रात ने चुपके से फिर कानों में कहा, संगीत से खूबसूरत कोई साथी नहीं होता। जो दिल को समझ ले बिना कुछ कहे, उससे बेहतर कोई हम सफ़र नहीं होता।

तो दोस्तों, इसी मधुर एहसास के साथ अब हमें भी दीजिए अनुमति। उम्मीद है रात की ये सुरमई महफिल आपके दिल को सुकून दे गई होगी। अपने अपनों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।

और यूं ही सुनते रहिए मधुर संगीत के ये प्यारे प्यारे नगमे आकाशवाणी उदयपुर के साथ, जिसे आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। मैं आपका रेडियो दोस्त विवेक अग्रवाल आपसे लेता हूं विदा और साथ ही कहता हूं कि 9:30 बजे यानी 9:30 मिनट पर कुछ और भी फिल्मी गानों के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक फिल्म संगीत का ये सफ़र यहीं तक। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ 8:09 समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल

0: में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति

0: पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit institution.

श्रोताओं, इस संदेश के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। आइए एक बार फिर से अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के कार्यक्रम मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। आइए एक बार फिर से अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का ये भाग हमने आज केंद्रित किया है सुप्रसिद्ध महान संगीतकार, गायक, अभिनेता पंकज मलिक पर। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम फिल्म संगीत और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र विवेक अग्रवाल। आज की सुरीली महफिल में हम याद करेंगे भारतीय सिनेमा और संगीत जगत के उस महान कलाकार को जिनकी आवाज़ में आत्मा की मिठास थी, जिनकी धुनों में भक्ति, प्रेम और संवेदनाओं का अद्भुत संगम था। जी हाँ दोस्तों, आज का ये विशेष अंक समर्पित है महान अभिनेता, संगीतकार और गायक पंकज मलिक को। पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत के उन स्तंभों में गिने जाते हैं जिन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि साधना बनाया। उनका जन्म आज ही के दिन 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने रविंद्र संगीत को जन जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सुरीली यात्रा की कपाल कुंडला इस फिल्म के गीत के साथ। यह गीत पंकज मलिक की मधुर गायकी का अद्भुत उदाहरण है जिसमें विरह और प्रेम दोनों की मिठास एक साथ सुनाई देती है जो हमारे हृदय को छू लेती है।

किया मिलन को जाना, ये गीत गाया पंकज मलिक ने। उस दौर में जब तकनीक सीमित थी, तब भी पंकज मलिक की आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती थी। उन्होंने भारतीय सिनेमा में बैकग्राउंड म्यूजिक और रेडियो संगीत को नई पहचान दी। वे लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे और संगीत को घर घर तक पहुँचाया। अब बढ़ते हैं अगले अमर गीत की ओर।

श्रोताओं, पंकज मलिक केवल गायक ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील संगीतकार भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में ऐसा संगीत दिया जिसमें भारतीय शास्त्रीयता और सरलता का सुंदर मेल दिखाई देता है। अर्ज करते हैं एक प्यारी सी शायरी, कुछ आवाज़ें वक्त के साथ बूढ़ी नहीं होती, वो यादों की तरह दिल में हमेशा जवान रहती है। और अब सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में एक और अनुपम रचना।

श्रोता, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत जो आज केंद्रित है गायक अभिनेता संगीतकार पंकज मलिक पर। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

साथियों, पंकज मलिक को भारतीय संगीत में योगदान के लिए कई सम्मान मिले। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। उनकी गायकी में जो सादगी थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।

नदियाँ

साथियों, क्या खूबसूरत दौर था वो, जब गीतों में शब्द भी कविता होते थे और धुनें दिल की धड़कनों जैसी लगती थी। पंकज मलिक ने अपने संगीत से उस दौर को अमर बना दिया।

श्रोताओं, पंकज मल्लिक की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी आत्मीयता। उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई अपना दिल की बात कर रहा हो। आज भी पुराने संगीत प्रेमी उनके गीतों को बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं।

श्रोता, फिल्म संगीत की आज की संगीत यात्रा में हमने याद किया उस महान कलाकार को जिसने भारतीय संगीत को आत्मा दी, संवेदना दी और अमर धुनें दी, पंकज मलिक। जी हाँ, इनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को भी यूं ही प्रेरित करता रहेगा। चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और ये नगमा।

0: श्रोताओं, इसी मधुर भावना के साथ मैं आपका रेडियो दोस्त विवेक अग्रवाल इस कार्यक्रम से इजाज़त चाहता हूँ। हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और 10 भी बज चुके हैं, साथ में 10 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे अगला कार्यक्रम। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में आपके लिए प्रस्तुत है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवार्षिक अखिल भारतीय संगीत सभा। We bring you a Veena recital by Vidwan D. Srinivas. Accompanying him on Mridangam is Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam, Shri M. Chandrakant.
1: Vidwan D. Srinivas Telangana ke ek agrini Karnataka sangeetkar hain. Ek sangeet parampara wale parivar mein janme, Srinivas ne 7 saal ki umr mein apni maa Srimati D.L. Tulsi ke margdarshan mein Veena siksha ka Shri Ganesh kiya. 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार

0: हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास, ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन फ्रॉम तेलंगाना, वॉज बॉर्न इन टू ए म्यूजिकल लीनिएज। ही बिगैन द आर्ट ऑफ वीणा एट द एज ऑफ 7 अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर श्रीमती डी एल तुलसी। By the age of 9, he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication, he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट विद्वान डी श्रीनिवास इज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास ने अपने वीणा वादन की शुरुआत राग गौला में मैसूर वासुदेवाचार की एक रचना से कर रहे हैं जो आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास बिगिन्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग गौला सेट टू आदि ताल।

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है.
1: Now you will listen to a composition of Ramaswamy Sivan in the rag Sarasangi set to Khanda Chapu Taal.

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदि ताल त्रिस्र गति।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by श्री यशवंत हम्पी होली and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास concludes his Veena recital with a composition of Sadashiva Brahmendra in the rag Ahir Bhairavi set to Aditaal.

0: इसके साथ ही आज की रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वीणा रिसाइटल बाई विद्वान डी श्रीनिवास इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन मृदंगम बाई श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाई श्री एम चंद्रकांत। दिस कॉन्सर्ट was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार ले होंगे, समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।